0: Energy.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. Na vida, la murga. Energy, murga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35 14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनशाइन कैंसिल है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल होना चाहिए।
3: आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: ऑफिस में अपनी इंटर्न के साथ मेकिंग आउट करते हुए पकड़े गए आप, आपको ऑफिस ने निकाल दिया 2 हफ्तों के लिए और आपने सबको कहा आपका पेट खराब है, दैट्स व्हाई यू टुक अ छुट्टी. ये झूठ पकड़ा जाएगा तो कैसा लगेगा आपकी बीवी को?
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: वैसे तो आप बदतमीज इंसान हो, लेकिन बिकॉज आई एम क्वाइट नॉन जजमेंटल, आपके पास कोई कन्फेशन है तो फील फ्री टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ. मेरे साथ है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
4: Hi Roshi, how are you?
2: I'm very good, Mystery Girl. आप ऐसे क्यों साउंड कर रहे हैं जैसे
4: मेरी आवाज ही ऐसी है, मैं क्या करूँ?
2: आपकी आवाज जैसी है, क्या आपका चरित्र भी उसी तरह का है?
4: चरित्र तो ठीक है, बस थोड़ा जबान का इशू है आवाज के साथ ना, दोनों चीजें वहीं से निकल रही
2: हैं. क्या आप मुझे कहने की कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जुबान बहुत कैपेबल है बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करने की?
4: मुझे लगता है मेरा दिमाग में, जब मैं ऐसी सिचुएशन में कहीं फंस जाता हूँ ना, तो मेरा बहुत तेज दिमाग चलता है.
2: दिमाग तेज चलता है, इसमें जुबान की हमने कोई बात नहीं करी है. जुबान के साथ ओके, आप पहेलियां बुझाना बंद करेंगे. कन्फेशन बॉक्स है, नॉट इंक्रीज योर IQ. तो आप मुझे बता दो ना कि करा क्या हमने जिंदगी में.
4: यार एक्चुअली आई वाज इन द कार विद अ गर्ल.
2: राइट.
4: चीजें मतलब थोड़ा हम लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे, थोड़े देर घूमने उमने के बाद थिंग्स गॉट थोड़ा कोजी. देन वी वर लाइक इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग थिंग्स, नॉट डूइंग एग्जैक्ट लाइक मेकिंग आउट.
2: मैं समझ गई.
4: वो गलती से ना मेरे मुंह से ना किसी और का नाम निकल गया लड़की का, एंड शी रियलाइज्ड इट लाइक एकदम से.
2: ओके.
4: एट दैट टाइम वी वर अ बिट इंटॉक्सिकेटेड, सो आई वॉज लाइक की यार कम पिया करना यार, कम नशे किया करते. कुछ नाम नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं किस किसका नाम सुनती रहती है. आई वॉज टेकिंग योर नेम, एंड इवन देन आई वॉज नॉट श्योर अबाउट द नेम, सो आई सेड बेबी.
2: आपको शर्म नहीं आती है अभी कंफेस करते हुए?
4: फिर उसको लड़की को दोबारा कॉल नहीं किया, मे बी नंबर,
2: क्योंकि आपको उसका नाम नहीं पता था. आपके साथ गाड़ी में जो हुआ वो कन्फेशन अपनी तरफ है. द फैक्ट दैट उसके साथ बेहद नशे में मेकआउट करने के बाद भी आपको उसका नाम कम बेहद नशे में भी आपको उसका नाम नहीं याद है?
4: यार मुझे आज तक नहीं याद है यार.
2: यू जस्ट कॉल्ड हर बेबी एंड गॉट ओवर दैट. ब्रो द नेक्स्ट टाइम मुझे कोई बेबी कह रहा है ना भाई, मैं उसे पूछने वाली हूँ बेबी बेबी तो ठीक है, मेरा नाम बता क्या है, मेरे बाप का नाम बता क्या है, मेरा पैन कार्ड का नंबर बता क्या है, देन वी विल मेक आउट. बट आई एम गोइंग टू रोशिफाई यू, ठीक है? क्योंकि नॉट बिकॉज आप एक निहायत ही गलीच इंसान नहीं हो, बट बिकॉज आप इतने ऑनेस्ट हो, ठीक है? यू आर लाइक जी,
0: यू हैव बीन roshified.
2: No, but honestly, it takes great courage to talk about this in public. Besharam, behude. It was very
4: nice.
2: नाम आपको पता कहाँ है और आपका नाम मैं याद रखने नहीं वाली हूँ. ऑन दैट नोट, अगर आपकी भी जिंदगी में आपने ऐसे ही इतने गलीच काम किया ना, व्हाई डोंट यू हिट मी अप, बिकॉज आई एम रियली नॉन जजमेंटल फॉर मोस्ट पार्ट. मंडे से लेके थर्सडे तक तो पक्का ही. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक, पर व्हाटएवर यू डू, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: प्यार तो अंधा होता है पुष्पा, और आपके केस में प्यार गरीब भी होता है। आपने सोचा नहीं था जब आप राइट स्वाइप कर रहे थे अपनी डेटिंग ऐप पर कि इस लड़की को जिसे आप राइट स्वाइप कर रहे हो वो आपसे कितने गुना ज़्यादा अमीर है। जब अपने पापा से मिलाएगी आपको तो क्या कहोगे आप उन्हें कि आप भी बिजनेसमैन और मैं भी अनएम्प्लॉयड? कैसे मानेंगे उसके पापा इस शादी और रिश्ते के लिए? यही एक ऐसी चीज हमारे ऑफिस में सुश्रुत के साथ हो रही है, हु इज इन लव विद दिस क्रेजी रिच बिजनेसमैन की बेटी। अब अंकल जी चाहते हैं कि रिश्ता जो है इक्वल्स के बीच में हो, तो शाश्वत जी आए हमारे पास। उन्होंने कहा कि ये जो पिताजी हैं ये काफ़ी अजीब किस्म के सज्जन इंसान हैं। यह कह रहे हैं कि बहुत पैसा होगा तभी हम कंसिडर करेंगे, तो बहुत पैसा कैसे आएगा रोजी? और जो मैंने सासू को बताया, नॉट माई सासू, आई डोंट हैव अ सासू, शाश्वत इज सासू, वही मैं आपको बता रही हूँ। वास्तु के हिसाब से अपने घर की एंट्रेंस को अगर आप साफ, वेल लिट, प्लांट से भरा हुआ, खुशनुमा रखते हो तो आपका वॉलेट भी वैसे ही वेल लिट और खुशनुमा होगा। ये एक मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग कॉमनली करते हैं, अपने घर की एंट्रेंस को जैसा है वैसे ही छोड़ देते हैं, एंड दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स आपकी आर्थिक स्थिति, एंड दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स आपकी रोमांटिक स्थिति। तो अपने घर की एंट्रेंस को बदलिए और आपका पूरा रिश्ता हर जगह से, हर तरफ से वेल लिट हो जाएगा, जैसे कि सासू का होने वाला है जब उसे मिलेगी एक अमीर सासू माँ। ऑन दैट नोट, अगर आपकी जिंदगी में समथिंग इज अ प्रॉब्लम, हिट मी अप। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड इफ दैट प्रॉब्लम इज मेडिकल, कॉल अ डॉक्टर। अदरवाइज सेंड मी योर नंबर एंड आई कॉल यू, एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: कई बार मैं सोचती हूँ what is the nicest thing that my ex did for me, और मेरे जहन में उसका आंसर एक ही आता है. He made sure that I wasn't with him. क्योंकि अगर मैं उसके साथ होती तो आज मैं जिंदा नहीं होती, for sure. टॉक्सिसिटी की प्रतिमूर्ति, उसने तो टॉक्सिक होना एक ओलंपिक स्पोर्ट बना लिया था. वो तो मैं टाइम पर बच गई, नहीं तो आज मैं आपसे बात नहीं कर रही होती. लेकिन अगर मेरी तरह आपको भी यही लगता है कि आपके एक्स ने आप पर यह एहसान किया कि वो आपकी जिंदगी से कट लिया एक अच्छे टेलर की तरह, then why don't you hit me up? We'll compare notes. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE. And talking of Olympic sports, dating guys who are major red flags seems to be my personal favorite Olympic sport. On that note, while you find me on your socials, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: Mirchi. Iskabala, puskabala, sakabala. Rabala. Murga, murga. La virbala, murga. Mirchi, murga.
1: Hello? Hello?
2: Sir, very good evening, man. Thanks for calling.
1: हाँ बोलिए
2: सर. I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या बात है
2: सर, I'm so sorry, पूरा बता रही
1: है. क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है
2: क्या? अब तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: पागल है क्या? दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे.
2: अब तो फंस गए सर.
1: हेलो
2: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
1: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
2: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं
2: जी? अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार.
3: अब मिर्ची खा.
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
6: अज बोतला खुल्ला.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आई डोंट नो ये किसे सुनने की ज़रूरत है, लेकिन शायद आपको, बिकॉज अगर इस वक्त में आप मुझे सुन रहे हो, देन आई हैव जस्ट वन थिंग टू से टू यू. समटाइम्स दुनिया में सबसे स्ट्रांग चीज़ जो आप कर सकते हो वो है इसे जाने दीजिए, लेट इट गो. अगर आपके दिल को ये दर्द पहुंचा रहा है, अगर ये आपके लिए कन्फ्यूजिंग है, अगर ये येस और नो के बीच में कहीं बैठा हुआ मे भी है, देन शायद अपने दिल की वेलबींग के लिए आपको इस चीज़ को जाने देना होगा. ये एक रिश्ता हो सकता है, एक इंसान हो सकता है, आपका प्यार हो सकता है फॉर समबडी. बट इफ इट इज़ हर्टिंग यू एवरी सिंगल डे, देन इट इज़ टाइम टू लेट इट गो. और अगर ये लेट गो करना आपके लिए मुश्किल है ना, आई अंडरस्टैंड द फीलिंग, क्योंकि अक्सर जिंदगी में मैंने इसे किया है और ये प्रैक्टिस बहुत मुश्किल है. हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम मिर्ची रोशी है, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. शायद अगर आपको उस हाथ की ज़रूरत है जिसे पकड़ के आप लेट गो कर सकते हो, माइंड माइट बी द हैंड दैट यू आर लुकिंग फॉर. सो फाइंड मी ऑन योर सोशल्स एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Roshi, Roshi.
1: Mirchi Roshi.
2: Only on Radio Mirchi, New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
3: ब्रो अब तो तू नस काट ले, ठीक है? अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको ये कहा आफ्टर यू आस्क हर कि हाँ इज एवरीथिंग ओके, एंड शी टर्न्स अराउंड एंड सेज हाँ इट्स ओके, मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी, इट्स फाइन, और आपने मान लिया कि इट इज़ फाइन और आपने मान लिया कि उसे इसके बारे में बात नहीं करनी है, तो बेटर है कि आप नस काट लो, क्योंकि इट विल बी अ लॉट ईजियर. उसके बाद जो आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ करेगी ओवर अ पीरियड ऑफ 5-6 दिन, उस तरह का टॉर्चर आप झेल नहीं पाओगे. तो पहले ही नस काट लो एडवांस में. जब आपकी गर्लफ्रेंड कह रही है इट्स ओके, तो सुनो ढंग से वो क्या कह रही है. इट इज नॉट ओके, तू एक नंबर का गधा है, तुझे एक चीज समझ में नहीं आई, इतने साल तुझे पीट पीट के समझाने की कोशिश की, दिमाग तेरा कहां घास चढ़ने गया था, स्कूल में फेलियर, रिलेशनशिप में फेलियर, नस काट लो आप. प्लीज आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया, गो फॉर इट. आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट. अपने आप सेल्फ हार्म मत करना, एंड डोंट ब्लेम इट ऑन मी, आई एम जस्ट किडिंग. बट इफ यू हैव बीन थ्रू अ फाइट जहां आपने अपने गर्लफ्रेंड की इट्स ओके आई एम फाइन को इट्स ओके आई एम फाइन मान लिया था, आई रियली वॉन्ट टू नो आप किस तरह के बेवकूफ हो. एंड टू शेयर दैट स्टोरी विद मी, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So go ahead and do whatever you have to do. Just don't cut your nuts in real time. And kahin mat jana jana, kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte rao Mirchi, it's hot.

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La fiesta la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?

0: पूरा नाम जान सकता हूँ?
1: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
0: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
1: है 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने
0: लगा। वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
1: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
0: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
1: मेरा सनशाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
0: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
1: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी, इंटरनेट का कनेक्शन है
0: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
1: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
0: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
1: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
0: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
1: से डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल
0: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
1: क्या
0: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
2: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
1: नहीं,
0: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Roshi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi, New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: ऑफिस में अपनी इंटर्न के साथ मेकिंग आउट करते हुए पकड़े गए आप, आपको ऑफिस ने निकाल दिया 2 हफ्तों के लिए और आपने सबको कहा आपका पेट खराब है, दैट्स व्हाई यू टुक अ छुट्टी. ये झूठ पकड़ा जाएगा तो कैसा लगेगा आपकी बीवी को?
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: वैसे तो आप बदतमीज इंसान हो, लेकिन बिकॉज आई एम क्वाइट नॉन जजमेंटल, आपके पास कोई कन्फेशन है तो फील फ्री टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ. मेरे साथ है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
4: Hi Roshi, how are you?
2: I'm very good, Mystery Girl. आप ऐसे क्यों साउंड कर रहे हैं जैसे
4: मेरी आवाज ही ऐसी है, मैं क्या करूँ.
2: आपकी आवाज जैसी है, क्या आपका चरित्र भी उसी तरह का है?
4: चरित्र तो ठीक है, बस थोड़ा जबान का इशू है आवाज के साथ ना, दोनों चीजें वहीं से निकल रही हैं.
2: क्या आप मुझे कहने की कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जुबान बहुत कैपेबल है बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करने की?
4: मुझे लगता है मेरा दिमाग में, जब मैं ऐसी सिचुएशन में कहीं फंस जाता हूँ तो मेरा बहुत तेज दिमाग चलता है.
2: दिमाग तेज चलता है, इसमें जुबान की हमने कोई बात नहीं करी है. जुबान के साथ ओके, आप पहेलियां बुझाना बंद करेंगे. कन्फेशन बॉक्स है, नॉट इंक्रीज योर IQ. तो आप मुझे बता दो ना कि करा क्या हमने जिंदगी में.
4: यार एक्चुअली आई वाज इन द कार विद अ गर्ल.
2: राइट.
4: चीजें मतलब थोड़ा हम लॉन्ग ड्राइव पे निकले थे, थोड़े देर घूमने उमने के बाद थिंग्स गॉट थोड़ा कोजी. देन वी वर लाइक इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग थिंग्स, नॉट डूइंग एग्जैक्ट लाइक मेकिंग आउट.
2: मैं समझ गई.
4: वो गलती से ना मेरे मुंह से ना किसी और का नाम निकल गया लड़की का, एंड शी रियलाइज्ड इट लाइक एकदम से.
2: ओके.
4: एट दैट टाइम वी वर अ बिट इंटॉक्सिकेटेड, सो आई वॉज लाइक की यार कम पिया करना यार, कम नशे किया करते. कुछ नाम नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं किस किसका नाम सुनती रहती है. बट आई वॉज स्पीकिंग योर नेम, एंड इवन देन आई वॉज नॉट श्योर अबाउट द नेम, सो आई सेड बेबी.
2: आपको शर्म नहीं आती है अभी कन्फेस करते हुए?

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आप खुद में ही बहुत मस्त इंसान है, आपको किसी और की जरूरत नहीं है. हाँ, अगर जिंदगी में कोई ऐड हो जाए देन यू विल स्पिल योर लव इनटू देयर लाइफ एज वेल, लेकिन आपको ऐसे किसी के पीछे चेज करने की जरूरत नहीं है. यू आर समबडी हु अट्रैक्ट्स, डज नॉट चेज. अगर ये आपकी पर्सनालिटी टाइप है देन लेट मी गेस दैट आपकी फेवरेट ड्रिंक या बेवरेज ऑफ चॉइस होगी ब्लैक कॉफी, बिकॉज मेरी मम्मी की ये फेवरेट ड्रिंक है. एंड व्हाट इट सेज अबाउट यू एज अ पर्सनालिटी टाइप इज कि आप एक नो नॉनसेंस, बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही लाइक यू नो सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ अवेयर इंसान हो. यू आर समबडी हु इज फिटनेस ओरिएंटेड. आप बहुत ही एम्पावर्ड इंडिविजुअल हो. जिंदगी में आपने एक फेयर अमाउंट ऑफ स्ट्रगल देखा है और उस स्ट्रगल को देखने के बाद यू हैव इवॉल्व्ड योर सेल्फ टू अ प्लेस जहां आप अपने लिए बिल्कुल संतुष्ट और तृप्त हैं. और अगर आपकी जिंदगी में प्यार आ जाए तो यू विल ट्रीट इट लाइक अ बोनस प्रेजेंट. अगर ये सब आपकी पर्सनालिटी टाइप को फिट कर रहा है एंड सरप्राइज सरप्राइज यू रियली लव ब्लैक कॉफी, देन अपने बारे में व्हाई डोंट यू शेयर मोर डिटेल्स. हो सकता है हम दो

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: द शो स्टार्ट्स इन
3: एंटरटेनमेंट बहुत हो रहा है आजकल कंटेंट भी रील्स भी सॉन्ग्स भी शोज भी हर फ्राइडे कुछ ना कुछ आ ही रहा है लेकिन ऑनेस्टली याद रहने वाली चीजें बहुत कम बन रही हैं और शायद इसलिए इस वक्त बॉलीवुड का मूड इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक तरफ धुरंधर जैसी फिल्म है इसके गाने सिर्फ चल नहीं रहे कल्चर को ऑक्यूपाई कर रहे हैं एंड दूसरी तरफ 90s और 2000s की मेमोरीज फिर से कमबैक कर रही हैं। पुराने साउंड सडनली कूल लगने लगे हैं, नए आर्टिस्ट ओवरनाइट स्टार्स बन गए हैं एंड ऑडियंस सिर्फ नॉइज नहीं फीलिंग ढूंढ रही है, कनेक्शन ढूंढ रही है बिकॉज इवेंचुअली एल्गोरिथम सिर्फ अटेंशन खरीद सकते हैं, इमोशन नहीं। और इसी इमोशन के साथ मुंबई से लेकर दुबई तक, कानपुर से दिल्ली तक, दिस इज द मिर्ची टॉक 20 एंड मैं हूं इस शो का होस्ट सुरेन सुंदरम। लेट्स बिगिन। फर्स्ट अप गाना नंबर 20। देखो शुरुआत में कहा था ना मैंने एंटरटेनमेंट वैसे बहुत हो रहा है लेकिन याद रखने वाली चीजें कम हैं। दिस इज दिल वाले चोर बाय आदित्य रिखारी एंड श्रेया घोषाल दैट फीचर्स इन पति पत्नी और वो दो। सुन लो भाई, याद रह गया तो अच्छी बात है। नंबर 20।

0: धंधा हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
1: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
0: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
1: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
0: बोलो।
1: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
0: कौन सा?
1: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
0: कच्चा? अच्छा।
1: हाँ, तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
0: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
1: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
0: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
0: कुकर तो है।
1: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। हाँ, कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
0: अच्छा।
1: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
0: सोडा,
1: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
0: लहसुन? यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना, खाना बना रहा है?
1: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
0: मतलब उसको पकाऊं?
1: हाँ, तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
0: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क? कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
1: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
0: नहीं नहीं, कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
1: नहीं, पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
0: चल जाएगी?
1: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
0: अबे कौन बोल रहा तू?
1: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
0: अरे यार ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
2: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
3: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot. Number 14.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
1: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम

0: Tera Ho Jaun, a typically Sachin Jigar song with Junita Gandhi and Stebin Ben. And Arijit ke retirement ke baad, thank God, new voices are emerging. Varna har hero ki ek hi awaaz hua karti thi. वैसे भी बॉलीवुड में हीरो बनना शायद इजी है, लेकिन हीरो बने रहना, ना दैट इज द रियल गेम, स्पेशली आज के वक्त में जहां फ्राइडे मॉर्निंग से ज्यादा ब्रूटल फ्राइडे इवनिंग का सोशल मीडिया होता है। और हाल ही में वरुण धवन की एक बात मुझे याद आ गई, उस बात में एक सरप्राइजिंग सच्चाई थी, क्योंकि फॉर अ फ्यू सेकेंड्स वरुण के अंदर का एक्टर नहीं, वरुण की इनसिक्योरिटी बोल रही थी।
1: मुझे एक्चुअली बिल्कुल टेंशन नहीं थी पहली फिल्म में। द मोस्ट स्ट्रेस आई फेल्ट वाज व्हेन मैं तेरा हीरो वाज रिलीज। मैं तेरा हीरो बिकॉज आई फेल्ट कि दिस वाज अ फिल्म, स्टूडेंट वाज अ फिल्म विद थ्री एक्टर्स। चलो यू नो ऑल द अदर एक्टर्स हैव गॉट वर्क आफ्टर दैट एज वेल, आई हैव नॉट। नाउ आई एम डूइंग दिस फिल्म विच इज अ कंप्लीट कॉमेडी फिल्म, न्यू एक्टर्स, ये जोन या ये सुर नहीं छेड़ रहे आज के टाइम में। अभी मैं ये कैसे ऑडियंस को बोलूं कि यार मैं सच्ची में हीरो हूं, मुझे सीरियसली लो, मैं कॉमेडी करना चाहता हूं, एक्शन करना चाहता हूं, रोमांस करना चाहता हूं, मैं सब कुछ करूंगा ऑडियंस के लिए, जस्ट गिव मी अ चांस। एंड लिटरली आई क्लॉड एंड फॉट एंड क्राइड एंड डन एवरीथिंग पॉसिबल इन दैट फिल्म। मुझे लगता है भगवान ने भी मुझे बहुत टेस्ट किया, लिटरली मेरा करियर बहुत, इफ मैं तेरा हीरो डिडंट वर्क एज अ सोलो हीरो फिल्म फॉर मी, आई वुड नॉट Be sitting here today.
0: और ये amazing है, क्योंकि बाहर से stardom बहुत glossy दिखती है, launches, hits, fame, fan following. लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक डर सबको होता है. What if the audience stops choosing me? What if they stop loving me? शायद इसलिए वरुण की बोली ये बात connect करती है. Because for one moment, वरुण धवन star नहीं लगे, बस एक actor लगे, जो survive करना चाहते हैं. और अब एक गाना जो ऑफिशियली सैयारा गैंग का हिस्सा बन गया है, वही लॉन्गिंग, वही सॉफ्ट हार्ट ब्रेक, वही लेट नाइट फीलिंग, फ्रॉम चांद मेरा दिल, दिस इज द टाइटल ट्रैक, चांद मेरा दिल, बाय फहीम अब्दुल्ला ऑन नंबर 13।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

ने वही दिल लगाया। और कभी कभी ना एक गाना हिट होने से पहले ही लोगों का बन चुका होता है, इंटरनेट पे, रील्स में, रैंडम लेट नाइट स्क्रोल्स में। और कुछ महीने पहले ऐसी ही दो आवाजें अचानक हर जगह सुनाई देने लगी थी, कृष मंडल एंड किशोर मंडल, दो भाई, नो बिग सेटअप, नो इंडस्ट्री लॉन्च, अस टैलेंट। और एक अजीब सी ऑनेस्टी, और मैं खुद इन दोनों को सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ, एंड इनका एक कवर तो अलग ही लेवल पे चला गया था।

0: See, that's the thing. Perfect नहीं है, polished भी नहीं है, लेकिन इस गाने में वो feel है, और शायद इसलिए लोग इनसे connect कर गए.
1: And फिर Bollywood enter हुआ.
0: Song को scale मिल गया,
1: stars आ गए, gloss आ गया, बादशाह आ गए.
0: And suddenly जिन दो लड़कों की वजह से ये गाना चला, वो अपने ही गाने में background में खड़े नजर आए,
1: like extras. And that felt strange.
0: और थोड़ा सा दुख भी हुआ. नॉट बिकॉज सक्सेस गलत है, ऑफ कोर्स नहीं है यार, लेकिन कभी कभी इंडस्ट्री टैलेंट को एलिवेट करती है और कभी कभी उसे डेकोरेट कर देती है. इंटरनेट ने उन्हें स्टार्स बनाया था, बॉलीवुड ने उन्हें एस्थेटिक बना दिया है.
1: लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बिकॉज रियल कनेक्शन इवेंचुअली अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है. और अब एक और शादी के बाद के चक्करों वाला गाना, नंबर 9 पे, फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है. दिस इज व्यार करवा दो जी,
0: यू आर ऑन द मिर्ची टॉप 20.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: नंबर 3।

Who is this da has climbed to number 2 and now suddenly the conversation gets much much bigger. It's me Suren aur aaj main aapko ek kitab ke bare mein kuch batana chahta hu. Baat hai 2010 ki Amish Tripathi aur unki likhi hui kitab The Immortals of Melhua Shiva Trilogy uska pehla hissa. Aur jab maine ye kitab pehli baar uthai to main bahut bahut andar chala gaya aur sach keh raha hu bahar hi nahi nikal paya. ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक पूरी दुनिया थी, एक सिविलाइजेशन, एक कॉन्फ्लिक्ट और एक इंसान जो भगवान बन जाता है. और जब आप इस किताब को पढ़ते हैं, आप सिर्फ शब्द नहीं पढ़ते, आप देखते हैं, आप सुनते हैं, आप महसूस करते हैं, आप वहां मौजूद होते हैं. और फिर करण जौहर ने इस किताब के राइट्स खरीद लिए. सालों तक कुछ नहीं हुआ, नो फिल्म, नो अपडेट, नो नथिंग. और फिर 2024 में अमीश त्रिपाठी ने कंफर्म किया राइट्स वापस आ गए हैं. मैं हैरान नहीं हुआ क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था, इतना कॉम्प्लेक्स था, इतनी रिलीजियस सेंसिटिविटी थी कि अगर आपकी विजन और आपकी एग्जीक्यूशन में एक भी चूक होती ना तो दुनिया आपको माफ नहीं करती. एंड अब खबर है एंड इट्स नॉट कंफर्म येट कि रणवीर सिंह धुरंधर की कामयाबी के बाद इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने वाले हैं. और मैं जानता हूं कि आप क्या पूछना चाहते हैं. क्या रणवीर सिंह ये रोल कर सकते हैं? क्या बॉलीवुड इस फिल्म को जस्टिस दे सकता है? लेकिन ये सवाल ही गलत है यार. असली सवाल ये है कि क्या कोई भी फिल्म, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी बजट कभी वो दुनिया बना सकता है जो आपने अपने दिमाग में बनाई थी जब आपने वो किताब पहली बार पढ़ी थी. शिवा ट्रिलॉजी द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ डिजर्व टू बी मेड, लेकिन सिर्फ तब जब कोई फिल्म मेकर इतना ब्रेव हो कि वो अपनी विजन को हजारों लोगों की इमेजिनेशन से ऊपर रख सके. अभी तक वो बंदा आया नहीं था लेकिन शायद अब आ चुका है. इस हफ्ते नंबर 1 पे वो गाना है, वो फिल्म है जिसके बारे में भी हमने कुछ ऐसा ही कहा था, यार धुरंधर इतनी बड़ी हो जाएगी 13 हफ्तों के बाद. वो लोग कहां हैं, धुरंधर कहां हैं और शरारत कहां है, आप वो खुद देख लो. नंबर 1 आदित्य धर, धुरंधर, शरारत, 13वां हफ्ता. नंबर 1.

0: शरारत 13 हफ्ते ऑन नंबर 1। एंड सच ये है कि इस गाने की जर्नी देखकर एक बात समझ आ जाती है कि हिट्स आते रहेंगे, लेकिन कभी कभी एक गाना सिर्फ चार्ट बस्टर नहीं बनता, वो पूरे वक्त का साउंड ट्रैक बन जाता है, और शायद शरारत वही गाना है। किसी के साथ ये था इस बार का मिर्ची टॉप 20। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
3: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

उदास सा गाना जिसमें अमिताभ बच्चन साहब उदास से मुंह फुलाए से घूमते रहते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ, उदासी में भी एक अलग खूबसूरती होती है। अगला जो गाना हम सुनने वाले हैं उसमें भी अमिताभ बच्चन साहब ऐसे मुंह फुलाए घूमते रहते हैं। त्रिशूल फिल्म का गाना। वैसे आपको पता है जो त्रिशूल टाइटल है, ये यश चोपड़ा साहब ने राइटर सलीम जावेद को दिया था कि भाई ये टाइटल है, इस पे फिल्म लिख दो। और जब इन्होंने फिल्म लिखी तो यश चोपड़ा साहब को समझ नहीं आया कि ये स्टोरी टाइटल से कैसे रेलेवेंट है। तो उन्होंने समझाया कि इस फिल्म के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक बाप, उसका एक जायज बेटा, एक नाजायज बेटा। वैसे अगर आप सोचें ना तो बहुत मायनों में त्रिशूल सिग्निफाइज द स्टोरी ऑफ द फिल्म, कि कैसे अमिताभ बच्चन एक वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन बनके अपने ही बाप से बदला लेते हैं, कैसे अपनों के दिए घाव एक त्रिशूल के जैसे उनके सीने में उतर जाते हैं, कैसे पास्ट प्रेजेंट को अफेक्ट करता है। सो दैट वे बहुत सारी सिग्निफिकेंस है। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारू के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सका बना, या बना। मुर्गा मुर्गा नबियत वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: सुमन जी, गुड इवनिंग। इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
3: हाँ जी हाँ जी।
4: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
3: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
4: होल्ड कर रहा हूँ।
3: हाँ जी हेलो।
4: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
3: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
4: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
3: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है।
4: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
3: है 35/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
4: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
3: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
4: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
3: मेरा सनशाइन कैंसिल है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
4: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
3: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
4: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
3: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
4: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
3: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता तो दो।
4: तो मैं आपको, अरे मैडम
3: आपसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल होना चाहिए।
4: आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
3: क्या
4: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो, मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो
3: मेरा।
5: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
3: नहीं,
4: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
2: इट्स पटाक।
0: पुरानी जीन्स चारू के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

ज्यूल थीफ की शूटिंग करते करते प्रेम पुजारी की स्क्रिप्ट लिख डाली देवानंद साहब ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जी, जब ज्यूल थीफ फिल्म की शूटिंग नेपाल में हो रही थी तब देवानंद साहब ने वहाँ पे दूरबीन से चाइना का बॉर्डर देखा और उनको ऐसा कुछ दिखा कि एक सिपाही छोटे से

पपी के साथ, डॉगी के साथ खेल रहा है। तब उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ सीन भी फिल्म में जरूर होगा। और अगर आप प्रेम पुजारी फिल्म देखें तो उसमें एक छोटा सा डॉग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। हम भी आगे बढ़ते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi. ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: 90s के गाने की लाइंस हैं कि मेरे जागने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। शबाना आजमी जी ने एक बार एक पुराने इंटरव्यू में शेयर किया था कि जिन एक्टर्स के साथ वो काम करती थी कौन लेट लतीफ होते थे, कौन टाइम पे होते थे। सुनिए।
1: There was a time when I was working with Sanjeev Kumar in a film by Gulzar Saab called Namkeen, and in the evening I was working in a film called Jwalamukhi with Prakash Mehra and Shatrughan Sinha. So, ये तो लिखा हुआ था कि 7 बजे की शिफ्ट है, लेकिन संजीव कुमार फिल्म सिटी में 12:30 बजे से पहले नहीं पहुंचा, और फिर 2 बजे की शिफ्ट में शत्रुघ्न सिन्हा 5:30 बजे से पहले नहीं पहुंचे। बच्चन साहब एंड शशि कपूर फर्स्ट पर्सन टू अराइव ऑन द सेट, दीज वर द टू पीपल हु वुड जस्ट, आप अपनी घड़ी, नाउ दीज वर पीपल यू एडमायर्ड, एंड देन इट इज टू यू हुम यू चूज टू एम्युलेट।
0: क्या बात है भाई, चलिए अभी देर नहीं करते, टाइम हो गया है बहुत ही ब्यूटीफुल गाना सुनने का। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची 90.4।

भाई कुछ दिन पहले ना मैं टीवी पर नसीब फिल्म देख रही थी और मेरे ऐसे मतलब होश उड़े जा रहे थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मतलब लिटरली मैं फिल्म देखते हुए सोच रही थी, अरे इसमें ये भी है, अरे इसमें ये भी है, अरे इसमें ये भी है, कितने सारे एक्टर्स। और मनमोहन देसाई साहब की ना इस बात में तो दाद देनी पड़ेगी भाई, मल्टी स्टारर फिल्म्स वो जो बनाते थे उसमें इतने सारे एक्टर्स होते थे। सोचिए आप, इतने सारे एक्टर्स को मैनेज करना, हैंडल करना, उनके ईगो क्लैशेस, उनके टैंट्रम्स, उनकी पंक्चुअलिटी, जो भी उनकी डेट्स वगैरह वो सब हैंडल करना, उफ कितना मुश्किल हो जाता होगा। ये नसीब फिल्म की मैं बात कर रही हूँ, इसमें अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, रीना रॉय, ऋषि कपूर, किम, और फिर विलन्स में सब भर रखे हैं भाई, अमजद खान, कादर खान, अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, फिर प्राण साहब भी हैं, कितने सारे कैरेक्टर एक्टर्स हैं। Hats off to this guy, मनमोहन देसाई साहब, या जो भी उस टाइम पे मल्टी स्टारर फिल्म्स बनाते थे, सब दाद के काबिल हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

1981 की फिल्म दर्द का ये गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नक्श लियालपुरी साहब ने इसे लिखा है। वैसे इनका असली नाम जसवंत राज शर्मा था। नक्श लियालपुरी इनका

सारा कागज भिगो गई आंखें, कितना गहरा है इश्क का दरिया, इसकी तह में डुबो गई आंखें, दो दिलों को नजर के धागे से एक लड़ी में पिरो गई आंखें, नक्श आबाद क्या हुए सपने और बर्बाद हो गई आंखें। वाह वाह वाह वाह। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू, आपके साथ एक और सुंदर गजल सुनेंगे, शहरयार साहब की लिखी हुई, उमराव जान फिल्म से। सुनते रहिए मिर्च।

0: Pirani Jeans with Charu, only on Mirchi. Only on Mirchi.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Rabana. Burka, burka. Nafir bala burka. Mirchi burka.
2: Hello. Hello.
3: Sir, very good evening. Bank support.
2: हाँ बोलिए
3: सर. I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
2: बनवाया था भैया, क्या हो गया? क्या बात है
3: सर, I'm so sorry, पूरा बताइए
2: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
3: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
2: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
3: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
2: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
3: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
2: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
3: I'm so sorry सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
2: पागल पागल है,
3: अब तो देने पड़ेंगे सर.
2: हेलो.
3: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
2: कौन बोल रहा है? विपिन.
3: नहीं सर, अब तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
2: अब
3: तो फंस गए सर.
2: हेलो.
4: सर आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
2: उसके पैसे क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
4: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
2: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
4: जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन.

मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। आपको पता है मोहम्मद रफी साहब ने अपना जो लास्ट गाना रिकॉर्ड किया था उसकी लाइंस क्या थी? तेरे आने की आस है दोस्त, शाम फिर क्यों उदास है दोस्त, महकी महकी फिजा ये कहती है तू कहीं आस पास है दोस्त। 1981 में रिलीज हुई फिल्म आस पास का ये गाना है। ऐसा सुनने में आता है कि रफी साहब ने ये गाना अपनी डेथ के कुछ आवर्स पहले उसी दिन 31 जुलाई 1980 को ही रिकॉर्ड किया था। खैर, ये गाना रिकॉर्ड हुआ था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए। और एलपी और रफी के सुपर्ब कॉम्बिनेशन का एक और गाना यहाँ पर सुनते हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: 1972 की फिल्म गोरा और काला, जिसमें गोरा भी राजेंद्र कुमार बनते हैं, काला भी राजेंद्र कुमार बनते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। जी, दो जुड़वा भाइयों की स्टोरी है जिनमें फर्क ये होता है कि एक गोरा होता है और दूसरा किसी डिसऑर्डर की वजह से काला। इस रोल के बारे में एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए राजेंद्र कुमार साहब ने क्या कहा था।
1: गोरा और काला भी करने की वजह जो ये थी, वो टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, एक काली का और एक गोरे, तो वो जो मौका था एज एन एक्टर वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे काले का रोल बहुत पसंद था, उसको बहुत शौक से मैंने किया और पूरा पांव से लेकर सर तक काला बनना पड़ता था और 3-3.5 घंटे लगते थे। तो उसके बाद फिर जब गोरे की बारी आती थी तो 1-1.5 घंटा उसको साफ करने में लगता था, फिर गोरा बनना पड़ता था। खैर, तो बड़ा मजा आता था उसमें।
0: यार, पुराने जमाने में इनको ये सब करने में ज्यादा दिक्कत आती होगी ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी, रिसोर्सेज नहीं थे, और उसी वजह से ना, क्योंकि अब हमको इतने इफेक्ट्स और CGI वाले सब चीजें देखने की आदत हो गई है, तो पुरानी फिल्मों में जब ये सब चीजें देखते ना, कई बार थोड़ी फनी भी लगती है। खैर, दोस्त वर द डेज, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

आपको पता है बप्पी दा ने, बप्पी लायरी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक रिकॉर्ड भी बनाया था। मिर्ची सुन रहे आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये रिकॉर्ड था एक ही साल में 33 फिल्मों के 180 गाने रिकॉर्ड करने का। यस, दिस हैपेंड इन 1986। इन 33 फिल्मों में 15 तो हिंदी फिल्में थी भाई, वो वैसी वाली फिल्में जो 80s में नहीं आई थी, मैं बलवान, इल्जाम, इंसाफ की आवाज, सिंहासन, मेरा धर्म, ऐसी फिल्में। फैक्ट्री लगी हुई थी भाई, फैक्ट्री, गानों पे गाने निकल रहे थे। चलिए अभी जो गाना निकल कर आया है बप्पी दा का कंपोज किया हुआ, इट इज सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

1975 की फिल्म मौसम का ये गाना पिर्ची सुन रहे हैं आप। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में अपनी परफॉर्मेंस के लिए शर्मिला टैगोर जी को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला था। इस फिल्म के डायरेक्टर गुलजार साहब थे और आपको पता है गुलजार साहब इस रोल के लिए पहले जरीना वहाब जो तब नई नई थी उनको कास्ट करने का सोच रहे थे, लेकिन शर्मिला टैगोर जी को जब इस फिल्म के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि वो ये रोल करना चाहती हैं। और जिस तरह फिल्म का सब्जेक्ट था, गुलजार साहब को लगा कि कोई पॉपुलर एक्ट्रेस होगी तो फिल्म

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: सुमन जी, गुड इवनिंग। इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
3: हाँ जी हाँ जी।
4: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
3: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
4: होल्ड कर रहा हूँ।
3: हाँ जी हेलो।
4: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
3: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
4: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
3: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
4: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
3: है 3K 5/14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
4: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
3: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
4: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
3: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला है।
4: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
3: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
4: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
3: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
4: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
3: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
4: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
3: सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल
4: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
3: क्या
4: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
5: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
3: नहीं,
4: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
2: इट्स पटाक।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

आय हाय हाय हाय, दो डगे की नौकरी और लाखों का सावन, क्या कंपैरिजन बिठाया है मलिक साहब ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वर्मा मलिक इस गाने के लिरिसिस्ट है, रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का नाम। और ये जो गाना है ना, ये एक्चुअली फिल्म में जो मौसमी चैटर्जी का किरदार था उन पे पिक्चराइज्ड होना था, लेकिन उस टाइम वो सॉर्ट ऑफ फुल टाइम प्रेग्नेंट थी, तो जीनत अमान पर ये गाना पिक्चराइज हुआ। एंड अगर आप फिल्म देखें ना, तो जीनत अमान का जो किरदार है, उनका जो रोल है, उसके साथ ये गाना का जो मूड है, जिस तरह का ये गाना है, वो जाता नहीं है। चलिए अभी हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, फिर वापस आते हैं राइट पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची। हाँ।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: खयाम साहब की ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आपको पता है खयाम साहब जब 16-17 साल के थे, ये मैं 1943-44 की बात कर रही हूँ, तब जब इन्होंने अपने घर में कहा कि ये फिल्मों में एक्टर बनना चाहते हैं, तब इनके साथ क्या हुआ एक पुराने इंटरव्यू में इन्होंने शेयर किया था।
1: एक्टिंग के लिए ये हुआ कि घर वालों ने हमें निकाल दिया और पिटाई भी हुई, लेकिन एक माहौल था घर में शायरी का एंड मौसीकी के रिकॉर्ड सुनना, शायरी और अदबी किताबें, कुतुबखाना, वो एक घर में माहौल था। लेकिन इसकी हमने सजा भुगती और घर निकाला कहेंगे, देश निकाला कहें, वो हमने सहा
0: जी। और घर से निकले तो पंजाब के राहों से होते हुए, लाहौर से होते हुए, लुधियाना से होते हुए बॉम्बे पहुंचे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। सुन लेते हैं खयाम साहब की एक और ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: हर गाना हिट हर दूसरा गाना सुपर हिट
2: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली

हसीना मान जाएगी फिल्म का गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस गाने के राइटर का नाम है अख्तर रुमानी। अख्तर रुमानी साहब एक राइटर थे जिन्होंने कई फिल्मों की स्क्रिप्ट डायलॉग्स वगैरह लिखे हैं, कुछ गाने भी लिखे हैं जिनमें से एक ये गाना है। और अख्तर रुमानी साहब ना जो आइकॉनिक रेडियो प्रेजेंटर थे अमीन सयानी साहब, उनके दोस्त थे ये दोनों। सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे में साथ में पढ़ते थे। इनफैक्ट इन्हीं के कंटेम्प्रेरीज थे, इन्हीं के साथ कॉलेज में जो थे एक तो सिंगर महेंद्र कपूर साहब और डायरेक्टर विजय आनंद, देवानंद के भाई। ये चारों लोग सॉर्ट ऑफ एक ही बैच के आप कह सकते हैं। इसी बात पे आप भी अपने कॉलेज के स्कूल के दोस्तों को याद कीजिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्च।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. Na vidva la murga. Milci, murga.
1: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
1: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
1: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
1: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
1: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
1: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: अच्छा अच्छा।
1: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
1: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर तो है।
1: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा।
1: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
1: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना खाना बना रहा है?
1: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
1: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क, कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
1: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
1: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
1: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा है तू?
1: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: अरे यार जरा ये भी बता दो कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Pepermilci.
1: Escabana, puscabana, sacabana.
2: Rabana.
1: Burga, burga. La vieva la burga.
2: Milci, burga.
3: Hello? Hello?
4: Sir, very good evening. My bank to put on.
3: हाँ बोलिए
4: सर. I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
3: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या बात है
4: सर, I'm so sorry, पूरा बताइए
3: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
4: बता सर, आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
3: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
4: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
3: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
4: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
3: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
4: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
3: पागल पागल है क्या?
4: आप तो देने पड़ेंगे सर.
3: हेलो.
4: अब तो देने, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे.
3: कौन बोल रहा है? विपिन?
4: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
3: पागल है क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? पैसे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे पैसे.
4: अब तो फंस गए सर.
3: हेलो
4: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया.
3: उसके पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
4: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे. मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
3: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं? हाँ
4: जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
2: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।
2: गायत्र्यास्तु परम नास्ते, गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। ऋषियों ने इसीलिए गायत्री को महामंत्र कहा है। जो कोई इस मंत्र का शास्त्रोक्त विधि से पारायण करता है, उसके सारे पाप शाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के मनन से धन धान्य संतति समृद्धि बढ़ती है तथा मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। आइए इस महामंत्र का प्रारंभ वैदिक रीति से करते हैं। सर्वप्रथम पवित्रीकरणम्।

ध्यानम। अब हम गायत्री का ध्यान करेंगे। ओम नमस्ते देवी गायत्री सावित्री त्रिपदेक्षरे अजरे अमरे मातः त्राहि माम शरणागतम। ओम। हे सच्चित आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा, हम आपका ध्यान करते हैं। आप इस सौर मंडल के अधिपति सूर्य के भी संपूज्य हैं। हमें सन्मार्ग पर चलने की सतत प्रेरणा दो।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अपनी पूरी पोटेंशियल पर काम करें ताकि आपका माइंड आपकी स्ट्रेंथ बने, आइए इसे समझे।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मुझे एक चीज बताइए कि थोड़ा देर पहले मैं आपसे जब कह रहा था कि कभी कभी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने ब्रेन को ट्रिक करना पड़ता है, आप युक्ति कह रहे थे, मैं बेवकूफी कह रहा था। जैसे एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि आपको एक माउंटेन क्लाइंब करना है, बहुत देर से आप चले जा रहे हैं, पानी खत्म हो गया, आसपास कोई आदमी नहीं है, भूख लगी है, बहुत प्यास लगी, आप गिव अप करने का मन हो गई और मैं नहीं चढ़ सकता, अब तो हो गया, मैं यहीं पे गिर रहा हूँ। और ऐसी स्थिति हम सबके साथ जिंदगी में कभी ना कभी जरूर हुई है। और फिर आप चलते चलते आप गिरने वाले हैं, अचानक आपको सामने 2-3 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा लेक दिखाई देता है, तो अचानक आपके मन में स्फूर्ति आ जाती है, आप दौड़ के 2-3 किलोमीटर दौड़ जाते हैं वो लेक तक। तो एक समय ये था कि आपके पास बिल्कुल शक्ति नहीं थी, मरने तक आ गए थे आप, भूख प्यास से तरस रहे थे आप, और आप बोल रहे थे कि मेरे शरीर में इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं एक कदम और चल पाऊं। और अचानक आपके ब्रेन ने एक पानी का बहुत बड़ा तालाब देख लिया और आप में स्फूर्ति फिर से आ गई। तो ये क्या है, वही शरीर है, वही थॉट प्रोसेस है, वही इंसान है। तो कहीं ना कहीं हम डिसिप्लिन तो काम आ रहा है लेकिन ब्रेन को बेवकूफ भी आप बना रहे हैं ना।
4: मन की शक्ति, इसी को तो कहते हैं ना माइंड पावर। तो मन की शक्ति क्या थी कि जब आपने देखा, आपने कहा उन्होंने लेक को देखा, तो मन को जो चाहिए था उसको प्यास लगे थे,
3: बिल्कुल।
4: तो मन ने जब वो चीज देखी तो उसको क्या लगा कि ये वहां पानी है, ये मुझे चाहिए, तो वो पावर आ गई। ये सिर्फ यहाँ नहीं होता, हर जगह में आप देखेंगे, चाहे वो मैराथॉन्स होते हैं या कहीं होते हैं, वो कहते हैं जो लास्ट लेग ऑफ रेस होती है ना,
3: वो सबसे जरूरी होता है,
4: वो फिजिकल से नहीं होती, वो ज्यादातर मन से होता है।
3: बिल्कुल,
4: क्योंकि बॉडी गिव अप कर रही होती है, बॉडी रुकने के लिए कह रही होती है, पर आपको क्या दिखाई दे रहा होता है, आपको वो फिनिश लाइन दिखाई दे रही होती है, आपको वो गोल्ड मेडल मिलता हुआ दिखाई दे रहा होता है, आपको वो लेक दिखाई दे रही होती है, किसी बच्चे को वो अपना जो उसका ड्रीम है उसको
3: फुलफिल होता दिख रहा होता है,
4: समझो वो कोई यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है वो दिखाई दे रहा होता है। दिस इज कॉल्ड अ विजुअलाइजेशन टेक्निक।
3: बहुत बढ़िया,
4: आप अपने मन को विजुअलाइज कर रहे हो तो वो जब आपको रिजल्ट दिखाई देता है तो रिजल्ट आपके अंदर वापस ताकत लेकर के आता है। जैसे कई बार क्या करते हैं कई लोग, जैसे हमारे धर्म में क्या कहेंगे, आप अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग में जाएंगे।
3: हाँ।
4: तो लोग कहते हैं ये बेवकूफ बना रहे हैं, कई बार कहते हैं, पर एक्चुअली क्या होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ मोटिवेशन ना।
3: राइट राइट,
4: क्या आप जैसे वो बच्चे का मोटिवेशन, आप इतना पढ़ेंगे तो आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे, पर ये जरूरी है। अगर आप एंड रिजल्ट नहीं देखेंगे, उसको विजुअलाइज नहीं करेंगे, तो आपका जो पोटेंशियल है, हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं,
3: अपने आप से,
4: पर हम अपना बेस्ट पोटेंशियल और बेस्ट कैपेसिटी तो दें। हमें फर्स्ट आना है वो जरूरी नहीं है, वर्ल्ड में नंबर वन आना है वो जरूरी नहीं है, पर कभी कभी हम अपना जो पोटेंशियल है, अपनी जो कैपेसिटी है, उस तक भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं।
3: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जब आपका मोटिवेशन लैक करने लगे तो उसे कैसे सस्टेन करें? आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मुझे एक चीज बताइए, कभी कभी क्या होता है जब हम अपने पोटेंशियल से, जो आप कह रहे हैं हमें कुछ अचीव करना है, बहुत बड़ी चीज हमको करनी है, जिंदगी में एक सपना था वो पूरा करना है, और आज वो पूरा हो गया, या आज वो दिन है जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आज वो सक्सेस हमें मिल गई। तो कई बार ऐसा होता है, हमने देखे बड़े बड़े लोगों के साथ, जब वो एक बहुत बड़ी चीज़ दुनिया में जब टिक हो जाती है, जब वो सक्सेस पा लेते हैं, उसके बाद उनकी ज़िंदगी रैपिडली नीचे गिरती है, क्योंकि अब मोटिवेशन ही नहीं रहा। जैसे अभी हाल फिलहाल में हम लोग कुछ लोग बात कर रहे थे कि अब जोकोविक के लिए कोई मोटिवेशन ही नहीं बचा, क्योंकि उसके जो दो सबसे बड़े एक तरह से फियर्स कंपेटिटर्स थे, नडाल और फेडरर, वो रिटायर हो गए। तो वो जो मोटिवेशन था सुबह उठ के, आज मैं ये करूंगा, आज मैं वो करूंगा, क्योंकि मुझे फिट रहना है, इनसे मेंटल बॉन्ड, मेंटल टफनेस दिखाना था, वो कहीं ना कहीं चला गया। तो हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ जब एक बहुत बड़ा हिस्सा आपकी जिंदगी का, जो 20-30 साल का स्ट्रगल रहा कुछ अचीव करने के लिए, वो आपने अचीव कर लिया, और अब सडनली आपकी जिंदगी में कुछ रहा नहीं अचीव करने के लिए?
4: आपका मोटिवेशन अचीवमेंट पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आपका मोटिवेशन जर्नी को एंजॉय करने में होना चाहिए। अगर वो जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो अपनी जर्नी को एंजॉय करता है, खेल को एंजॉय करता है, तो वो सदा उस खेल को एंजॉय करेगा,
3: तो फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है,
4: सामने कौन है, आज वो कंपेटिटर है कि नहीं है, लेकिन उसको मजा किस में आ रहा है? खेल में नहीं आ रहा है,
3: कंपटीशन में आ
4: रहा है, उसको किसी को हराने में मजा आ रहा है।
3: तो ये बहुत जरूरी है, फर्क है कि हराना तो है, लेकिन अगर आप प्रोसेस एंजॉय कर रहे हैं,
4: वो तो कंपटीशन है, एक ने हारना है, एक ने जीतना है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, दैट इज डिफरेंट। आप वैसे भी उसके लिए स्पोर्ट शुरू नहीं करते हैं कभी।
3: बिल्कुल, बहुत बहुत

0: वो तो कब आपका एम बन जाता है, बाद में बन जाता है, वो भी तो एक स्टिमुलेंट है ना, क्या है वो, वो भी एक स्टिमुलेंट है कि जब हम जीतेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा लगता है, आपको एक हाई फील होता है, बट दैट वाज नेवर द पर्पस ऑफ द गेम. द पर्पस ऑफ द गेम, आपने वो शुरू क्यों किया था, आपको वो खेलने में मजा आता था.
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची. It's hot.

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अब नेक्स्ट क्या, इस सवाल को कैसे हैंडल करें, जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ये अच्छी बात है अपने के, लेकिन सिस्टर श्रेया कभी कभी क्या होता है, हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए ना एक गोल पोस्ट की जरूरत होती है। तो मैं सफर भी तभी इंजॉय करूंगा, जर्नी तब इंजॉय करूंगा जब मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। आपने कहा था ना वाई बहुत जरूरी है। तो जब एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट या बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है तो जो दूसरा गोल पोस्ट है वो डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैंने 20-30 साल दे दिए, स्ट्रगल कर लिया, सब कुछ सैक्रिफाइस किया और आप वो मिल गया, उसके बाद इंसान थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है कि अब क्या, अब और क्या हासिल करना, ये तो कर लिया। आई हैव बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, द मोस्ट वट एवर अकम्प्लिश पर्सन, अब इसके बाद क्या करना।
4: That is what I am saying, कि richest person आप बन गए वो ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए था, that shouldn't have been your goal. See, for example, आज हम एक एक्टर है, फिर एक दिन ऐसा होता है हम एक्टिंग करते करते एक नंबर वन एक्टर बन जाते हैं।
3: अब क्या?
4: पर मैं एक्टर क्यों था?
3: मुझे एक्टिंग पसंद है,
4: मुझे एक्टिंग पसंद आती थी, चाहे सामने 10 लोग बैठे थे, मैं थिएटर में परफॉर्म करता था तो भी मुझे अच्छा लगता था।
3: बात है।
4: फिर मैं फिल्म में परफॉर्म करने लगा तो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर परफॉर्म करते करते मैं किसी दिन नंबर वन बन गया तो भी मुझे अच्छा लगा। फिर मैं यंग आर्टिस्ट का रोल प्ले करता था तो भी ठीक है, मेरी एज बढ़ गई है, अब मुझे जो रोल मिलते हैं वो शायद हीरो के नहीं मिलते हैं, मुझे फादर के मिलते हैं या ब्रदर के मिलते हैं, मैं तो भी उस चीज को एंजॉय करता हूँ। बिकॉज व्हाट एम आई एंजॉयिंग?
3: द प्रोसेस ऑफ एक्टिंग।
4: आई एम एंजॉयिंग द प्रोसेस ऑफ एक्टिंग, एक्टिंग को मैं एंजॉय कर रहा हूँ।
3: जो बच्चन साहब
4: करते हैं इस चीज को एंजॉय नहीं कर। हाँ, बहुत सारे ऐसे जिनको हम वेटरन्स कहेंगे, हम इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स देंगे। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो गोल था इट वॉजंट अबाउट जस्ट बींग नंबर वन।
3: बिल्कुल सही कह रही
4: हैं। उनका जो गोल था एक तो एक्टिंग और उसको पॉलिश करते रहना, उसको रिफाइन करते रहना, उसमें इम्प्रूवमेंट लाते रहना, और उसके लिए तो हमने देखा कोई एंड है ही नहीं।
3: बिल्कुल नहीं है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का अपना विशेष महत्व है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस महत्व को समझ कुछ विशेष मंत्रों, श्लोकों एवं प्रार्थनाओं की रचना इस उद्देश्य से की थी कि मनुष्य जीवन की जटिलताओं के बीच अपने जीवन पथ को सहज सरल बना सके, अपने आराध्य और अपने बीच की दूरी मिटा सके। हिमालयन चांस में संग्रहित श्लोक एवं प्रार्थनाओं को आपने विभिन्न धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर घर परिवार में नियमित पूजा पाठ के लिए अवश्य ही सुना होगा। इनके द्वारा पढ़ने वाले मन मस्तिष्क पर प्रभाव का अनुभव भी किया होगा। प्रत्येक घर परिवार के लिए ये एल्बम निश्चित रूप से संग्रहणीय, उपयोगी एवं धार्मिक रुचि पैदा कर घर में भक्तिभाव पूर्ण वातावरण का निर्माण करने में सक्षम है। श्रद्धा भक्ति के साथ सस्वर उच्चारित श्लोकों एवं प्रार्थनाओं का ये संगीतमय संग्रह श्रद्धालु सज्जनों को आत्मिक संतोष प्रदान करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: What next? सोचना काफी नहीं, लगातार लगे रहना जरूरी है। कैसे? समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ये बहुत अच्छी बात है, कभी कभी इंसान कहते हैं व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद मैं क्या करूं। कुछ दिनों पहले हमारे जो कैमरा पे रोहित से भी आप बात कर रही थी, उसने कहा कि भाई अब मैं क्या करूं, तो शायद हम उसको कह सकते हैं बच्चन साहब की तरह बनो कि भाई यंग रोल्स नहीं मिल रहे हैं, अब ओल्ड रोल्स मिल रहे हैं, लेकिन ओल्ड रोल्स में भी एक्सपेरिमेंट करो। कभी आप किंग लियर बन रहे हैं, कभी आप साइकोपैथ बन रहे हैं, कभी आप अलग अलग चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं।
4: हम क्या करते हैं, हमें लगता है हम कुछ करेंगे तो खुशी मिलेगी। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम ह्यूमन बीइंग नहीं, हम ह्यूमन डूइंग है। तो हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हम करते हैं, हम करेंगे, ये करेंगे। जैसे वो बच्चे का एक पहले गोल होता है, टेंथ में इतने मार्क्स आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा, आ जाते हैं। फिर उसको होता है इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा ना तो मुझे खुशी मिलेगी, हो जाता है। फिर एक मोनोटोनी जैसी आने लग जाती है, मोनोटोनस होने लग जाता है। फिर उसको लगता है अब क्या, फिर उसको लगता है अच्छा थोड़ा मैं लाइफ में सेटल हो जाऊँ, एक अच्छी जॉब मिल जाए, एक अच्छी सैलरी हो जाए तो हो जाएगा। वो भी हो जाता है, ऐसा थोड़ी ना होता नहीं है। जॉब भी लग जाती है, सैलरी भी आ जाती है, हाई मिला ना। वेन एवर यू अचीव सम Whenever, वो एक स्टिमुलेंट का काम करता है, फिर आपको बहुत अच्छा लगता है थोड़े दिन के लिए, फिर थोड़े दिन के बाद फिर वही होने लग जाता है अब क्या। तो एक बार प्रमोशन हो जाए, थोड़े समय के बाद वो भी हो जाती है, फिर आपको बहुत अच्छा लगता है, अब आप कहते हैं फिर क्या। कोई तो लाइफ में होना चाहिए जिसके साथ मैं अपनी प्रमोशन, अपने सुख दुख शेयर कर सकूं, कोई पार्टनर होना चाहिए। अच्छा शादी कर लेते हैं, फिर वो भी हो जाता है। इनिशियली 6 months ब्लिस, उसके बाद वो भी एक जर्नी है। सो इट कीप्स हैपनिंग लाइक दिस, आप पोस्टपोन करते रहते हैं, वहाँ वहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, आप जर्नी को बेसिकली इंजॉय नहीं कर रहे हैं। एक होता है खुशी से वो सारी जीवन की यात्रा करना, और उसमें हर चीज जो आपने अक्वायर किया उसका पर्पस बहुत अलग होता है। मार्क्स का पर्पस था अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी का पर्पस था अच्छी जॉब, अच्छी जॉब का पर्पस था एक स्टेबल इनकम, स्टेबल इनकम का पर्पस था एक कंफर्टेबल लाइफ। कहाँ है उसके अंदर खुशी? लेकिन जब हम हर चीज को एक स्टिमुलेंट बना देंगे, हम कहेंगे ये मिला तो मुझे अच्छा लगा, ये मिला तो मुझे अच्छा लगा, फिर एक दिन आकर कहते अब क्या, अब क्या, अब कौन सा ऐसा स्टिमुलेंट हो जो मुझे थोड़ा सा हाई क्रिएट करे, तो वो इक्वेशन ही गलत चल रही थी। तो जब वो इक्वेशन गलत चलती है तो फिर एक दिन आकर आपको बहुत बोरिंग लगने लगता है, आपको लगता है अच्छा अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Perfectionist होना गलत नहीं, बस बैलेंस जरूरी है. कैसे? समझते हैं.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: ऐसे केसेस में मुझे बताइए जो परफेक्शनिस्ट होते हैं, कई बार मैं देखता हूँ वो बहुत हाईली अनहैप्पी होते हैं, क्योंकि हर चीज में उनको अपनी कमियां नजर आ रही होती हैं कि ये रह गया वो रह गया, और उनको बाकी लोगों को लगता है वाह तुमने कमाल काम कर दिया और क्या आउटस्टैंडिंग है, लेकिन वो हमेशा नहीं ये अच्छा हो सकता था, वो गहरे सोच में चले जाते हैं, गहन में चले जाते हैं, नहीं ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए एक्सेट्रा. तो परफेक्शनिस्ट को का जो पोजीशन हमने सोसाइटी में दिया, या कहीं ना कहीं हम बोलते हैं अरे परफेक्शनिस्ट, हम हमेशा उसको अव्वल दर्जे पर रखते हैं कि यार ये परफेक्शनिस्ट अलग लेवल पे काम करता है, लेकिन वो एज ह्यूमन बीइंग ज़्यादातर अपने अंदर घुसे होते हैं, उसी चीज़ पे लगे होते हैं, जो काम 3 दिन में हो सकता है उसको 300 दिन में करते हैं, और उसको हम बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं. तो फॉर परफेक्शनिस्ट मैंने देखा डिसिप्लिन बहुत हाई होता है, वो हर चीज़ सही तरीके से मिलजुल के लगातार लग के करते हैं, लेकिन वो डीपली अनहैप्पी होते हैं.
4: नहीं, जरूरी नहीं है. परफेक्शन बहुत जरूरी है. परफेक्शन हम सबका एक नेचुरल नेचर है, हम सबको अच्छा लगता है परफेक्शन. सबको अच्छा लगता है कोई भी काम करें, हम उसको परफेक्टली करें, हम एक डाइनिंग टेबल सेट करें हम परफेक्टली करें, हम एक रिकॉर्डिंग करें हम परफेक्टली करें, इट्स ओके. लेकिन जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है दैट इज सेल्फ क्रिटिकल होना. परफेक्शन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा दूसरा संस्कार कि हम बहुत क्रिटिकल है सेल्फ के प्रति. सेल्फ एनालाइज करना तक भी ठीक है. आपने एनालाइज किया, समझो आज हमने आज सारा दिन रिकॉर्डिंग करी, फिर हमने शाम को बैठ करके थोड़ा सा एनालाइज किया कि ऐसे कर सकते थे या ऐसे कर सकते थे, वो भी जरूरी है बिकॉज वो हमारे लिए एक इम्प्रूवमेंट, इट्स स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. लेकिन एक होता है क्रिटिकल होना, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये वो आपको अच्छा फील नहीं कराता. एक वो चीज, और दूसरा हमें परफेक्शन पसंद है
3: लेकिन सामने वाले को नहीं है,
4: कंट्रोल करना. परफेक्शनिस्ट क्या होता है, खुद तो जैसा करता है फिर उसको तो सारे के सारे वैसे होने चाहिए. तो ये दो चीजें आपको डिप्लीट करती है. एक बहुत ज्यादा अपने प्रति सेल्फ क्रिटिकल होना, एनालाइज करना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि गलती नहीं पता होगी तो हम चेंज कैसे लेकर आएंगे. लेकिन अपनी निंदा करते रहना, अपने को नीचे गिराते रहना, अपने से ठीक से बात नहीं करना, कोई हमें क्रिटिसाइज करे तो हमें अच्छा नहीं लगता.
3: लेकिन फिर तो कभी आमिर खान बनेगा नहीं इंसान.
4: हमें वैसे तो किसी को कुछ बनना जरूरी नहीं है. एवरीबडी हैज अ वेरी वेरी डिफरेंट प्रोसेस. जरूरी थोड़ी ना है कि जो आपको परफेक्शनिस्ट दिखाई दे रहे हैं, हमने क्या कहा था, जरूरी नहीं है वो अनहैप्पी है, जरूरी नहीं है वो हैप्पी है,
3: और जरूरी नहीं कि हमारी क्षमता वैसी है.
4: जरूरी नहीं है हमारी क्षमता वैसी है, पर परफेक्शन के लिए एम करना कुछ गलत नहीं है. परफेक्शन अगर मैं एम कर रहा हूँ

0: एक है वो टेढ़ी मेढ़ी बनी और मैंने रात को बैठ के सोचना शुरू कर दिया, मेरे से तो बनती नहीं है, मेरे से तो होता नहीं है, मैं तो कर नहीं सकता। या हमने बना ली तो हम दूसरे को कहना शुरू करें गोल बननी चाहिए, ये ऐसा क्यों बना, ये ऐसा क्यों हुआ,
1: तो ये भी नहीं करना।
0: वो आपकी पावर को डिप्लीट कर रहा है। पर अगर आज इंडिया का मैप बना भी तो आप एम तो रखेंगे ना कि धीरे धीरे धीरे धीरे मुझे उसको गोल बनाना है, तो वो एम रखने में क्या बुराई है। बुराई ये है कि आप दो जने रोटी बना रहे थे, उसने दो दिन में बना ली, आपको 10 दिन लग गए, वो प्रॉब्लम है। आप एम रखो परफेक्शन का, पर आप उसको ऐसे नहीं कंपेयर नहीं करो किसी के साथ।
1: ठीक है, जिस मतलब ईच टू देयर ओन,
0: ईच टू देयर ओन, ईच वन हैज देयर ओन कैपेसिटी, उनके टैलेंट, एक्सपर्टीज, स्किल, पास्ट एक्सपीरियंस, देयर टू मेनी फैक्टर्स जो वर्क करते हैं।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डिसिप्लिन, क्या ये सिर्फ हैबिट है या कैरेक्टर ट्रेट? समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मैंने एक और बहुत प्यारी कहानी पढ़ी, तो मैंने किताब नहीं पढ़ी लेकिन उसके बारे में पढ़ा है कि कहते हैं कि द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन जो हिस्ट्री में रहे हैं उनका नाम है मियामोटो मुसाशी, जापानीज थे, और उनकी किताब है द बुक ऑफ फाइव रिंग्स। उसमें वो कहते हैं देयर इज नथिंग आउटसाइड ऑफ योरसेल्फ दैट कैन एवर इनेबल यू टू गेट बेटर स्ट्रॉन्गर रिचर क्विकर और स्मार्टर। सो वो कहते हैं देयर इज नथिंग आउटसाइड ऑफ योरसेल्फ दैट कैन हेल्प यू बिकम दिस, एवरीथिंग इज विद इन, एवरीथिंग एग्जिस्ट्स, सीक नथिंग आउटसाइड ऑफ योरसेल्फ। तो ये पढ़ के, ये वन ऑफ माय फेवरेट कोटेशंस है, मैं इसको एक जमाने में अपने किताब अपने डेस्क पे रखता था। तो बेसिकली डिसिप्लिन जो है वो भी हमारे अंदर ही होता है, तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन बाहर खोजना इज लाइक कस्तूरी मृग जो है वो जिंदगी भर घूमती रहती है ये खोजने के लिए कि मस्क की जो स्मेल वो कहाँ से आ रही है। तो मोटिवेशन डिसिप्लिन हमारे अंदर होता है। क्या डिसिप्लिन एक कैरेक्टर ट्रेट है?
4: सी, मोटिवेशन क्या करता है, ठीक है, डिसिप्लिन की एक आदत हम सबके अंदर, मैंने जो आपने कहा कि बहुत सुंदर कोट था कि सब कुछ हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे अंदर होता है, सोल ओरिजिनली जिसको हम कहते हैं सतोगुणी। तो सतोगुणी का मतलब क्या है, शांति शक्ति प्रेम आनंद खुशी ज्ञान पवित्रता सब कुछ उसके अंदर है। जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, साड़ी वाइट है, इसको वाइट करना नहीं है, ये वाइट है, इसके ऊपर दाग लग गए और वो हटाने, तो वो सब कुछ अंदर होता है, पर मोटिवेशन ट्रिगर का काम करता है। कभी कभी मेरी साड़ी पे दाग लगे हैं पर आपकी वाइट ड्रेस देख करके मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं भी कर सकता हूँ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वो ट्रिगर का काम करता है, तो वो भी जरूरी होता है।
3: तो
4: आसपास ऐसे अगर लोग हैं हमारे जो ये मेहनत कर रहे हैं अपनी ड्रेस को वाइट रखने की, तो फिर मुझे भी एक इंसेंटिव मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है, संघ का रंग, एक इन्फ्लुएंस मिलता है कि मैं भी कर सकता हूँ, करना मुझे ही है, संस्कार मेरे अंदर ही है, लेकिन उसको हम क्या कर रहे होते हैं, जैसे अगर कोई हेल्दी खाना खाता है
3: उसको देख के हम इंस्पायर होते हैं।
4: हाँ, मैं जंक खा रहा हूँ, मेरी दिल भी है, पर आप रोज हेल्दी खाते हैं
3: तो इंस्पायर हो।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या डिसिप्लिन सिखाया जाता है या डेवलप होता है, जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा क्योंकि कई बार कहते हैं कि यार वो बड़ा डिसिप्लिन्ड है, मेरे से नहीं होता। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता था कि डिसिप्लिन इनकल्केट किया जा सकता है, ये कैरेक्टर ट्रेट है या इमोशन है। कभी कभी होते हैं कि इमोशन अगर है तो जरूरी नहीं कि मैं ये इमोशन मेरे अंदर हो, मैं अलग किस्म का बंदा हूँ। लेकिन अगर ये कैरेक्टर ट्रेट है जिसको डिवेलप किया जा सकता है, क्योंकि कई लोग होते हैं जो कहते हैं मुझसे नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये मेरे पर्सनैलिटी के विपरीत है। तो ऑल आई वॉन्ट टू आस्क यू इज, डिसिप्लिन ऐसी चीज है जिसको इनकल्केट किया जा सकता है, जिसको अपने कैरेक्टर में बांधा जा सकता है?
4: डिसिप्लिन 100% डेवलप किया जा सकता है, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि आप किस चीज के लिए वो डिसिप्लिन यूज कर रहे हैं। ये भी कई बार विजडम होता है टू अंडरस्टैंड दैट आई कैन नॉट डू दिस एंड आई कैन डू दिस, वो एक अलग चीज है। वो समझना जरूरी है। डिसिप्लिन क्या है, आप वो चीज रिपीटेडली कर रहे हैं, दृढ़ता से कर रहे हैं और आप उसको अचीव कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अस्थमा है, ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे तो मैराथन भागना ही है। सो मैं कितना भी डिसिप्लिन्ड हो जाऊं, पर जो मैंने गोल सेट किया वो भी तो ठीक होना चाहिए ना।
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
4: तो डिसिप्लिन आप इनकल्केट कर सकते हो, पर ये जो आपने कहा कि ये तो मेरे से होगा ही नहीं, तो अगर एक कोई अस्थमा का पेशेंट है या आपको पता है कि वो चीज शायद आपके बॉडी के कैपेसिटी के बियॉन्ड है, तो समझदारी ये होगी कि फिर आप वो रिस्क ना लें। तो ये भी एक, मैंने ये तो बेसिक, जैसे हम कहेंगे तो कॉमन सेंस है, आप जो गोल चूज कर रहे हैं आप उसको केयरफुली चूज करें और फिर आप उसमें डिसिप्लिन्ड होकर के उसको अचीव करें। वो गोल जो आप चूज कर रहे हैं वो भी क्लैरिटी से करना चाहिए।
3: बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: एक बेहतरीन गाइडेंस आपको देता है एक बेहतरीन दिशा. कैसे, आइए जानते हैं.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: तो आपने जो बोला, इसका एक रिलेटेड सवाल है जो राजीव से आया है, पुणे से. वो कह रहे हैं कि क्या आप मुझे प्लीज एडवाइस कर सकते हैं कि कई बार फॉलो अप करने के बाद, बहुत पेशेंट तरीके से फॉलो अप करने के बाद, जो सामने वाली पार्टी है वो मुझे सीरियसली नहीं लेती है और मुझे नेचुरली फिर गुस्सा आ जाता है कि कई बार बहुत पेशेंटली मैंने फॉलो अप किया लेकिन अब तुम मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हो, मेरा काम तो नहीं हो रहा. तो इस केस में मैं क्या करूं, क्योंकि अगर आपको सीरियसली नहीं लिया जाएगा तो आपका भी नुकसान होगा, तो मैं क्या करूं.
4: मैंने, आप कह रहे हैं कि अगर मैंने एक बार, आप कह रहे हैं कि मैंने किसी को पेशेंटली और प्यार से कई बार वो चीज समझाई लेकिन वो नहीं समझ रहा है तो मुझे गुस्सा करना पड़ता है उसको समझाने के लिए.
3: वो कह रहा है वरना वो हमको सीरियसली नहीं लेता.
4: वो मुझे सीरियसली ले, उसके लिए मैं अपना नुकसान करूंगा.
3: तो ऐसे केस में
4: पूछना है ना हमें,
3: ऐसे केस में क्या करना है जब सामने वाला काम ही नहीं कर रहा.
4: हमें ये डिसाइड करना है कि किसी को समझाने के लिए आप किसी का प्रॉफिट करने के लिए अपना नुकसान करेंगे?
3: नहीं,
4: आप किसी को हेल्प ही करेंगे लेकिन उसमें ऐसे करेंगे ना कि आपका नुकसान नहीं हो. आप अगर किसी को समझो धन के भी मदद कर रहे हैं तो आप ऐसे करेंगे ना जिसमें आपका, ऐसा थोड़ी ना कि किसी का घर चले पर आपका घर ना चले, ऐसा तो नहीं होता ना. आपका भी चले उसके बाद आप हेल्प करेंगे कि उनका भी चले. इसलिए पहले तो कभी भी वो मेथड हमें यूज ही नहीं करना जिसमें हमारा लॉस है, कभी भी नहीं. मैंने, हम ये नहीं कह सकते मैंने 10 बार प्यार से बोला था पर 11वीं बार तो मुझे गुस्सा करना ही पड़ा. तो जब भी आप करेंगे उसमें आपका नुकसान तो है. आपकी सोल पावर डिप्लीट होगी, आपके मन की स्थिति खराब होगी, उसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पर पड़ेगा, आपके रिश्तों पर पड़ेगा. तो वो चीज नहीं, अपने को वो परमिशन नहीं दे. दूसरा, आप उसको बहुत बार समझा रहे हैं, भले के लिए समझा रहे हैं, वो समझता है तो भी ठीक है, वो नहीं समझता है तो वो किसका लॉस है?
3: उसका
4: लॉस है.
3: लेकिन उससे मेरे काम को भी फर्क पड़ रहा है.
4: अगर आपके काम को फर्क पड़ रहा है, आप अगर वर्क प्लेस में है तो आप उस वर्क प्लेस से रिलेटेड जो राइट एक्शन है वो ले लें.
3: और कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला शायद मेरा परिवार वाला हो, तो मैं ये नहीं कह सकता कोई बात नहीं उसका नुकसान हो रहा, मेरे को क्या, मेरे को भी इफेक्ट करता हो.
4: आप अगर परिवार वाले भी हैं तो भी आप किसी को इंस्पायर कर सकते हैं, आप एंकरेज कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं. किसी की तकदीर तो नहीं लिख सकते ना. हम बच्चे को दिन में 50 बार कह सकते हैं पढ़ो पढ़ो, आप पढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपका भविष्य बनेगा. आप उसके लिए पढ़ तो नहीं सकते ना. हम सारा दिन यहाँ पर लोगों को कह सकते हैं अच्छा कर्म करो, अच्छे कर्म करने से आपका अच्छा भाग्य बनेगा, गलत नहीं करो उसके कॉन्सिक्वेंस आपको ही फेस करने पड़ेंगे. हम कह सकते हैं, हम उनके लिए अच्छा कर्म तो नहीं कर सकते, भगवान भी नीचे उतर करके नहीं कर सकता है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड आपकी कहीं ना कहीं लिमिटेशन भी है. जब तक वो नहीं चाहता तब तक वो चेंज आ भी नहीं सकता है. सो यू गाइड एंड इंस्पायर, डू इट 100 टाइम्स, डू इट डेली, बट देन ऑल्सो आप उनके लिए नहीं कर सकते, वो करना उनको ही पड़ेगा.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हेलो माय मिर्ची दीवानों, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स जो अभी अभी शुरू हुआ है। सुबह सुबह का पहला चाय का सिप या फिर कॉफी की पहली पहली खुशबू और सुबह सुबह मिर्ची मॉर्निंग्स पर सबसे पहले मेरी आवाज। वैसे ऑनेस्टली यार, देसी एक्सपैट की लाइफ जो है वो किसी नेटफ्लिक्स के ड्रामा से कम थोड़ी ना है। सुबह 7 बजे उठकर हुडी पहन के बाहर निकलते हैं और फिर मम्मी से इंडिया में फेस टाइम पर बातें करते हैं और मम्मी का हर बार का सेम डायलॉग है, लगता है कुछ खाना वाना खाना बंद कर दिया है। और ये सबको हैंडल करने के बाद बॉस के ईमेल्स भी हैंडल करने पड़ते हैं और हाँ, इस सब के बावजूद लाइफस्टाइल और वेदर को भी झेलना पड़ता है। और ऐसे में अगर कोई बेस्ट फ्रेंड साथ में हो तो लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है। सेम उसी तरह अगर मॉर्निंग्स अच्छी हो तो पूरा दिन बन जाता है। और दिन बनाने आती हूँ मैं, बोले तो प्रिसिला, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। तो फटाफट से मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 4। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi.
1: Escapa la puscapa la sacapana.
2: Rambala.
1: Burga, burga. La fiesta la burga.
2: Mirchi, burga.
3: हेलो
4: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
4: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
3: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
4: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
3: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
4: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना। हाँ
3: बोलो।
4: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
3: कौन सा?
4: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
3: कच्चा? अच्छा
4: हाँ, तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
3: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
4: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
3: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
4: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
3: कुकर तो है।
4: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
3: अच्छा
4: 4 लीटर में आप, मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
3: सोडा जो
4: सोडा, हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
3: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
4: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
3: मतलब उसको पकाऊं?
4: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
3: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क? कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
4: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
3: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस में लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
4: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
3: चल जाएगी?
4: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।

0: जरा ये भी ये बता दो कि मुर्गा गद्दा है पक्का
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची एयर

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। यू ट्यून इन टू मिर्ची मॉर्निंग्स एंड एक्सक्लूसिवली यहाँ पर हम करते हैं टाइम ट्रैवलिंग। हिस्ट्री में आज के दिन काफी कुछ ड्रामे हुए थे। 1962 में दी आइकॉनिक मैरिलिन मनरो सैंग हर सुपर फेमस सल्ट्री वर्जन ऑफ हैप्पी बर्थडे मिस्टर प्रेसिडेंट टू जॉन एफ कैनेडी एट मैडिसन स्क्वायर गार्डन। सबसे पहले आज के दिन है वर्ल्ड आईबीडी डे, विच इज एन अवेयरनेस डेडिकेटेड टू पीपल लिविंग विद क्रोन्स डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। और आज के दिन है नेशनल मे रे डे इन द यूएस। ये ऑफिशियली अप्रूव्ड एक्सक्यूज है टू स्टेप आउटसाइड, सोक अप सनशाइन एंड थोड़ा सा वाइटामिन डी लेने का। वैसे आज के दिन इट्स ऑल्सो नेशनल डेविल्स फूड केक डे, विच साउंड्स इविल बट टेस्ट्स लाइक फॉरगिवनेस। एंड वे बैक इन 1536 एन बोलीन वॉज एग्जीक्यूटेड बाय किंग Henry VIII. It's proof that toxic relations existed long before Instagram came. और इसी बात पर मुझे follow कर लो Insta और X पर, मेरा handle name है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp पर number है 9033 Mirchi, that's 9033647244. फिलहाल stay tuned and stay hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: ओला माय पीपल, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स पर अब वेदर का हाल चाल जानने का टाइम। सो लिसन अप, राइट नाउ इट्स अराउंड 70 डिग्रीज फारेनहाइट एंड इट्स प्रीटी सनी व्हिच साउंड्स क्यूट एंड इनोसेंट, लेकिन इमोशनली अटैच मत हो जाना वेदर से, क्योंकि आफ्टरनून आते आते टेम्परेचर जो है वो क्लाइम करने वाला है। इट्स गोना गो अप टू 95 डिग्रीज फारेनहाइट। And not that you need that information today, but आज के दिन पिछले 24 घंटों की तरह zero precipitation है, यानी कि बरसात का नामो निशान नहीं है। It's going to be dry cleaning weather type का दिन। And later you'll get partly cloudy skies around 4 PM, लेकिन honestly those clouds are just there for moral support. So heads up, आज heat advisory भी है in effect till Wednesday evening, which means you gotta hydrate yourself like your life depends on it, because honestly it kind of does. Carry your water, carry your sunscreen, and please carry me, बोले तो Priscilla, with you on Mirchi mornings. और अभी फटाफट से मुझे follow करो Insta और X पर, मेरा handle name है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp पे मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल चपक के बैठो यहीं पर, स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज दैट टाइम ऑफ द शो जहाँ पर हम पता करते हैं अराउंड द वर्ल्ड क्या चल रहा है। सबसे पहले सानिया हैज बिकम द फर्स्ट वुमन इन द इंडियन एयरफोर्स टू अर्न द प्रेस्टीजियस कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर रैंक, बेसिकली द हाईएस्ट इंस्ट्रक्शनल रेटिंग फॉर मिलिट्री पायलट्स इन इंडिया। शी ट्रेन एट द फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल इन चेन्नई एंड कम्प्लीटेड सुपर रिग्रस फ्लाइंग एंड ग्राउंड ट्रेनिंग। नंबर टू पर अ डीपली ट्रेजिक एंड सेंसिटिव केस आउट ऑफ इंडिया इन्वॉल्विंग ट्विशा शर्मा। ट्विशा वॉज फाउंड एट जस्ट 5 months after her wedding and allegations are now being exchanged between both families. Her parents have accused her husband and in-laws for dowry harassment, while her mother-in-law has made separate claims regarding Trisha's career and family dynamics. And number three per, Aaron Rye, the Indian origin golfer from Wolverhampton, just became the first Englishman in 107 years to win the PGA Championship. He started golfing at the age of 4 and turned pro at 17. Also, fun fact, he's famous for using iron gloves during tournaments. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hu Prisila tumhare saath mein. Sun rahe ho Mirchi Morning. Sunte raho mujhe aur jaakar mujhe follow bhi kar lo. Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X. That is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.
2: Yeah. Wanna feel that? Come on, girl. Be the beat.

0: Mirci. Iscabana, puscabana, sacabana, rabana, burga, burga. La firma la burga.
1: Mirci, burga. Hello? Hello?
2: Sir, very good evening, man. Thanks a lot.
1: हाँ बोलिए
2: सर. आई एम सो सॉरी सर, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या बात है
2: सर, आई एम सो सॉरी, पूरा बताएं.

0: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे कभी कभी हो जाता है सर। सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया। हेलो
0: आई एम सो सॉरी सर, मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था। सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने, उससे कुछ खरीदा था?
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा। भैया पागल है क्या?
0: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे।
1: पागल
0: पागल है, अब तो देने पड़ेंगे सर।
1: हेलो
0: अब तो देने, अब तो फंस गए देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए देने पड़ेंगे।
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
0: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे।
1: पागल
0: तो फंस गए सर।
1: हेलो
0: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ। सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया।
1: उसका पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
0: नहीं सर वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ।
1: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
0: हाँ जी, अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग. सो आईपीएल 2026 गेव अस वन ऑफ द स्वीटेस्ट मोमेंट्स एवर ड्यूरिंग द चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइज हैदराबाद क्लैश एट द एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई. आफ्टर द टीम फोटो लेजेंडरी एमएस धोनी कैजुअली पिक्ड अप हिज ओन चेयर बिकॉज अपेरेंटली बीइंग अ क्रिकेट आइकॉन कैप्टन कूल एंड एवरीवन्स इमोशनल सपोर्ट प्लेयर स्टिल डजंट स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग बेसिक चोर्स. बट देन यंग सीएसके प्लेयर उर्विल पटेल रश्ड इन एंड बेसिकली सेड nope, not on my watch, and insisted on carrying the chair himself. Internet immediately melted and said, oh, because that's like our desi respect culture. Honestly, this is why everyone loves Dhoni. Because unme koi superstar wala attitude nahi hai na. Wo kabhi aise nahi dikhate ki, excuse me, do you even know who I am? Toh batao aise aur kaun se celebrities hai? Mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp par mera number hai 90336 47244. Whatever. अपने मैसेजेस ड्रॉप करो. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, my birthday babies. Mirchi Mornings पर वो टाइम आ चुका है जहाँ पर हम बातें करते हैं आज तुम्हारे स्पेशल डे के बारे में. तो आज के दिन तुम अपना बर्थडे किन के साथ शेयर कर रहे हो? सबसे पहले ग्रैमी विनिंग सिंगर सैम स्मिथ is in your birthday squad. You also share your birthday with India's very own king of comedy, Veer Das. इसका मतलब ये कि तुम्हारा sarcasm level is 3000. And then rock music lovers legendary guitarist Pete Townshend was also born today. Basically, आज के दिन birthday squad is giving like super talented drama, humor and main character energy. And people born on 19th of May seem emotionally versatile. One minute वो deep thoughts में होते हैं, next minute वो kick attack करते हैं. और अगर ये बड़ा ही relatable behavior है तो मुझे बताओ, message करके या आपने birthday shoutouts भेज सकते हो. Insta और X पर मेरा handle है Mirchi Pris, that is MIRCHIBRIS. तुम चाहो तो मुझे cake भी भेज सकते हो, लेकिन no pressure. And also follow me there. And WhatsApp पर मेरा number है 90336472444. And अभी Mirchi इधर bangers का time है, stay tuned and stay hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, my gold lovers. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब हम पता करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर का आज का हाल क्या है।
2: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,540, $4,540 पर ट्राउंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। गोल्ड के प्राइस अमेरिका में इंडिया से अबाउट 15% चीपर है। जी हाँ, आपने सही सुना, हिंदुस्तान से अमेरिका में गोल्ड के प्राइस सस्ते हैं। कैसे? आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए राज ज्वेल्स के टीम मेंबर से समझे कि किस तरह से 15% गोल्ड का प्राइस अमेरिका में इंडिया से सस्ता है। और गोल्ड में रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट करें राज ज्वेल्स के साथ। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू यू।
1: एंड देयर यू हैव इट, द लेटेस्ट रेट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। मुझे फॉलो करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6 4 7 2 4 4. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
1: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
1: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
1: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
1: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
1: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: अच्छा।
1: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
1: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूँ?
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर? हाँ कुकर तो है।
1: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा।
1: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
1: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
1: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
1: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सिटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सिटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सिटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
1: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
1: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
1: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा है तू?
1: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: यार यार। ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब हम सुनने वाले हैं सितारे क्या कहते हैं।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी मेष राशि, आज थोड़ा सा लो फील कर सकते हो बिकॉज मार्स जस्ट एग्जिटेड योर साइन, बट रिलैक्स, बॉस एनर्जी स्टिल इंटैक्ट है। जो न्यू प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे वो टाइम पर मोनेटाइज हो सकते हैं। लकी कलर फॉर यू इज येलो, लकी नंबर इज 18। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, अटेंशन आ रहा है तुम्हारी तरफ वेदर यू लाइक इट और नॉट। सो मे बी टुडे डोंट वेयर दैट आई वोक अप लाइक दिस हुडी टू जूम मीटिंग्स। लकी कलर फॉर यू इज ब्राउन, लकी नंबर इज 44। जेमिनी यानी मिथुन राशि, दैट वियर्ड एंग्जाइटी वाली फीलिंग वो टेम्पररी है यार। सन इज मूविंग इनटू योर साइन सून एंड कंफ्यूजन का सॉफ्टवेयर अपडेट होने वाला है। लकी कलर फॉर यू इज नियॉन ऑरेंज, लकी नंबर इज 9। कैंसर यानी कर्क राशि, लव वाइब्स आर स्ट्रॉन्ग टुडे। इफ यू लाइक समवन मे बी स्टॉप स्टॉकिंग देयर स्टोरी साइलेंटली एंड जस्ट से हाय, यूनिवर्स इज बेसिकली नजिंग यू टुडे। लकी कलर फॉर यू इज रोज गोल्ड, लकी नंबर इज 27। लियो यानी कि सिंह राशि, करियर स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटर देन योर रिंग लाइट टुडे। पीपल आर नोटिसिंग योर efforts, so walk into that meeting like background music is playing for you. Lucky color for you is bright red, lucky number is 3. Virgo yani kanya rashi, mind readers don't exist sweetheart. If you need help, ask for it. Today's lesson is communication before frustration. Lucky color for you is gray, lucky number is 31. And that's the first part of rashi zone. Baki bata second part lekar thodi si der mein main wapas aaungi. Tab tak ke liye tum lo ye mirchi tar bangers wala break. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में इंस्टा और एक्स पर। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

Radio Mirchi, New York. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Wow, what a ride it's been. This is your girl Priscilla with you wrapping up Mirchi Mornings. तुम्हारा डेली का मॉर्निंग मैगजीन जो है ना वो अब एंड हो चुका है आज के लिए. जाने से पहले लेकिन तुम्हें बताती हूँ एक स्पाइसी सा अपडेट. अ वीडियो ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइविंग ड्यूरिंग हिज यूएई विजिट हैज गॉन वायरल ऑनलाइन विद पीपल हिलेरियसली कंपेयरिंग द एंट्री टू अक्षय खन्ना's स्टाइलिश सीन फ्रॉम धुरंधर. बिकॉज बियॉन्ड द मीम्स एंड ड्रामेटिक एडिट्स द विजिट वॉज एक्चुअली फोकस्ड ऑन स्ट्रेंथ India UAE diplomatic and economic relationships. लेकिन social media being social media, important meeting गई sideline पे. Cool effects डालकर सबसे पहले swag वाला गाना लगा दिया और उसका meme बना दिया. Honestly, Indian memers can turn anything into cinema. चाहे वो wedding की entry हो, which is cinematic nowadays, office का resignation हो, which is very dramatic nowadays, and even entering Costco with AirPods on, feeling like you're the main character of this movie that's going on. कुछ लोग ना online comparisons ढूंढ ही लेते हैं और कभी-कभी बहुत ज़्यादा funny होते हैं, चाहे कितने भी ज़्यादा exaggerated क्यों ना हो. वैसे meanwhile, desi Instagram editors already added slow motion, boss booted. Music and transition effects on Modi ji's video. Because subtlety तो हमारे देसी life का part है ही नहीं. And on that note, my lovely people, time for me to leave you for today with good vibes, good music and a lot of happy thoughts. You be good. Have a great day. और मिलूंगी तुम्हें कल same time, same place, same frequency. मेरा नाम याद रखना Priscilla और मुझे follow करना मत भूलना Insta और X पर. मेरा handle name है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. And WhatsApp पर मेरा number है 9033647244. अभी के लिए Tada! Stay tuned and stay hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स चारू के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: भाई ये तो हम जानते हैं कि किशोर कुमार ने म्यूजिक की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो अपने ग्रोइंग अप इयर्स में जब वो संगीत सीखना चाहते थे तो क्यों नहीं सीख पाए? सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था और कैसे शेयर किया था।
1: चल के तुझे मैं लेके चलूं,

0: पले। लेकिन हकीकत यह है कि जवानी में प्यार कम मिलता है और मुसीबतें ज्यादा। वो ऐसे कि मेरी जवानी ने चाहा कि मैं बहुत बड़ा क्लासिकल सिंगर यानी शास्त्रीय गायक बनूं, मगर चूंकि मेरे पिताजी वकील थे और उनकी कचहरी में संगीत का कोई स्थान नहीं था, इसीलिए मैं संगीत की कोई शिक्षा नहीं ले पाया।
1: भाई बिना संगीत की शिक्षा के ये ऐसे तोप थे, शिक्षा ले लेते तो पता नहीं क्या ही ये तोप बड़ूम बड़ाम कर देती। और पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची। हाँ।

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची
1: हेलो
2: सुमन जी, गुड इवनिंग। इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेन करी है?
1: हाँ जी हाँ जी।
2: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
1: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
2: होल्ड कर रहा हूँ।
1: हाँ जी हेलो।
2: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
1: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
2: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
1: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
2: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
1: है 3rd K 35/14A 1st फ्लोर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
2: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
1: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
2: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
1: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
2: वो ठीक हो जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
1: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
2: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
1: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
2: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
1: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
2: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
1: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल
2: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं? नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
3: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
1: नहीं,
2: दोबारा कॉल करेंगे। आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
0: इट्स पटाक। पुरानी चीज विद चारू, ओनली ऑन।

0: हेलो, ये तो हमको पता ही नहीं था।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये बात कि बॉबी फिल्म, जो ऋषि कपूर डिंपल कपाड़िया की डेब्यू फिल्म थी, उसमें मेन रोल बॉबी के रोल के लिए नीतू सिंह का भी ऑडिशन हुआ था, वो सिलेक्ट नहीं हुई, डिंपल कपाड़िया सिलेक्ट हो गई। भाई वैसे नीतू जी एज अ चाइल्ड एक्टर काम करती थी, बट ये बड़े होने के बाद वाला जो डेब्यू होता है वो फ्यूचर हस्बैंड के साथ तो नहीं हो पाया, लेकिन उसी साल फ्यूचर जेठ जी के साथ इनका फिल्मी डेब्यू हो गया 1973 की ही फिल्म रिक्शा वाला में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और ऋषि कपूर डिंपल कपाड़िया की जोड़ी वाला एक और गाना सुन लेते हैं। काफी सेंसुअस हॉट गाना है ये। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

आपने जॉनी मेरा नाम फिल्म का वो गाना देखा है, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। मिर्ची सुन रहे आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इट्स अ फन सॉन्ग जहाँ पे देवानंद हेमा मालिनी को सॉर्ट ऑफ टीज कर रहे हैं, उनके घर में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग खिड़कियों के द्वारा। उस घर में इतनी खिड़कियां दिखाई गई है भाई, इतनी खिड़कियां हैं, ऐसा सोच के लगता है कि ए वुमन लाइक हेमा मालिनी इज लिविंग देयर, इट इज सो अनसेफ। हालांकि खिड़कियां बंद करने के तरीके हैं, विंडो ब्लाइंड्स हैं, कर्टन्स हैं, खिड़की पूरी तरह से बंद हो जाए ऐसा भी तरीका है, लेकिन इतनी सारी खिड़कियां, इतनी सारी छिपकलियां घुसाती होंगी गर्मियों में, चूहे तक घुस सकते हैं। अरे चूहे क्या, डॉग्स कैट्स कुछ भी आ सकता है, कबूतर, इतनी खुली खुली खिड़कियां हैं, वो मेंटेन करनी कितनी मुश्किल हो, और रात को सोने से पहले कितनी खिड़कियां बंद करोगे। अगली बार वो गाना देखे तो ध्यान से देखे और काउंट भी करना कितनी खिड़कियां हैं, मैं भी काउंट करूंगी अगली बार। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप पूछ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु,
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

So the other day I watched this film called Jhooti and I fell in love with Rekha once again. मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये ना मिड 80s की फिल्म है जब रेखा अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रख रही थी, तो वो बहुत फिट लग रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। मुझे तो उनकी ड्रेसिंग सेंस भी इस फिल्म में बहुत अच्छी लगी। तो इसमें ना उनको घर में सबसे छोटी दिखाया गया है, वो बहुत पैम्पर्ड भी है और उनको झूठ बोलने की आदत है। इस फिल्म में अमोल पालेकर, राज बब्बर ये लोग हैं। और ऐसी क्यूट हार्ट वार्मिंग सी फिल्में किनकी होती हैं? ऋषिकेश मुखर्जी की। अगर आपने फिल्म नहीं देखी प्लीज देखें। और अभी हम गाना सुनेंगे उस फिल्म का जिसे बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और उसमें रेखा को उनकी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। खूबसूरत फिल्म का गाना पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्च।

सचगत स्पृहा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

भाई ज्यादातर लोग सुप्रिया पाठक जी को खिचड़ी टीवी शो में उनके हंसा के रोल के लिए याद रखते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। जी वही कि मेरा नाम हंसा और प्रफुल व्हाट इज एंड माय फेवरेट, मैं तो थक गई बाय जॉब। नो वंडर दिस परफॉर्मेंस, दिस रोल इज माइंड ब्लोइंग। लेकिन सुप्रिया पाठक जी ने इतनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस दी हैं इन वैरायटी ऑफ रोल्स। आपको पता है ना, ये फेमस एक्ट्रेस दीना पाठक जी की डॉटर हैं और इनके फादर बलदेव पाठक यूज्ड टू मेक ड्रेसेस फॉर एक्टर्स लाइक राजेश खन्ना एंड दिलीप कुमार। Anyway, coming back to her performances, इनको इनकी पहली फिल्म 1981 की कलयुग के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और उसके बाद की जो इनकी फिल्म थी उसके लिए भी उनको यही अवार्ड मिला था। उसी फिल्म का हम यहाँ गाना सुनेंगे, फिल्म का नाम बाजार। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: पुरानी जीन्स विद चारु ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची
1: हेलो हेलो
2: सर वेरी गुड इवनिंग थैंक्स फॉर
1: हाँ बोलिए
2: सर आई एम सो सॉरी सर बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का
1: बनवाया था भैया क्या हो गया नहीं क्या बात
2: सर आई एम सो सॉरी पूरा बताइए
1: क्या करो भैया कहाँ क्या हो गया
2: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को कहीं पे यूज किया आपने कुछ परचेजिंग करी उससे
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो क्या कर रहे हो
2: आई एम सो सॉरी सर ऐसे कभी कभी हो जाता है सर सर उससे कुछ परचेज किया आपने
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया हेलो
2: आई एम सो सॉरी सर सर मैं आपसे कहना चाह रहा था सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था सर बस फाइनली ये बता दीजिए कुछ परचेज किया आपने उससे कुछ खरीदा था
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा भैया पागल है क्या
2: आई एम सो सॉरी सर आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे
1: पागल पागल है क्या
2: आप तो देने पड़ेंगे सर
1: हेलो
2: आप तो देने अब तो फंस गए देने पड़ेंगे अब तो फंस गए देने पड़ेंगे
1: कौन बोल रहा है विपिन
2: नहीं सर तो बैंक में आना पड़ेगा बैंक का खाना खाना पड़ेगा बैंक के पैसे देने पड़ेंगे अब तो फंस गए सर
1: हेलो
3: सर आप फोन मत काटिएगा प्लीज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ मैंने एक मजाक किया छोटा सा मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था आपका मुर्गा बन गया
1: उसके पैसों को क्या हुआ भाई देने पड़ेंगे
3: नहीं सर वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे आप अब भी नहीं समझे मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ
1: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं हाँ
3: जी अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
0: पुरानी जीन्स विद चारु ओनली ऑन

0: कहा था विलियम शेक्सपियर ने,
1: गुलाब को आप किसी भी नाम से पुकार लें, गुलाब की खुशबू तो वैसी ही रहेगी ना।
0: पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu इस नाम से। यहाँ पे नाम में काफी कुछ रखा है। सुनते रहिए मिर्ची।

1975 की फिल्म जख्मी का ये गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आपको पता है ये फिल्म ताहिर हुसैन साहब ने प्रोड्यूस की थी, जो आमिर खान के फादर थे। और आमिर खान की दो फिल्मों का नाम पहले जख्मी होने वाला था, एक तो उनकी 1998 की जो गुलाम फिल्म थी वो, और फिर 2012 की तलाश, लेकिन किसी वजह से फिर जख्मी नाम नहीं रखा गया। ऐसे नाम में क्या रखा है।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
2: हिट, हिट, हिट, हिट गाना।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: पुराने जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

1976 का मास्टरपीस सॉन्ग। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और ये गाना है कभी कभी फिल्म का टाइटल ट्रैक। जी हाँ बहनों भाइयों, उस साल गीत माला में ये गीत पायदान नंबर एक पर था। इस गाने के लिए खयाम साहब को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, साहिर साहब को बेस्ट लिरिसिस्ट और मुकेश साहब को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। अच्छा, खयाम साहब ने ना ये गाना, इस गाने की जो ट्यून है, ये 50s की किसी फिल्म के लिए कंपोज की थी। वो गाना रिकॉर्ड भी हुआ था, गीता दत्त एंड सुधा मल्होत्रा उन्होंने ये गाना गाया था, लेकिन किसी वजह से वो फिल्म बन नहीं पाई या रिलीज नहीं हुई, तो वो गाना खयाम साहब के पास पड़ा हुआ था। तो जब ये कभी कभी फिल्म का म्यूजिक बन रहा था, उन्होंने यश चोपड़ा को ये ट्यून सुनाई, चोपड़ा साहब को पसंद आ गई, साहिर साहब के लिरिसिस्ट इस पे फिट कर दिए गए, मुकेश और लता मंगेशकर ने इसे गाया और ये मास्टरपीस बन गया। तो सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

यार इस गाने को इसका वीडियो देखते हुए सुन लो ना, तो ये सैड सॉन्ग से कॉमेडी सॉन्ग बन जाता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। गैम्बलर फिल्म का ये गाना, जिसमें देवानंद साहब ने ऐसी मूंछें लगा रखी हैं जो बहुत फनी लगती हैं। वैसे देखो देवानंद साहब बहुत बोल्ड थे, बहुत स्टाइलिश थे, अपने लुक्स के साथ वो इतना एक्सपेरिमेंट करते थे, रिस्क लेते थे, लेकिन ये वाली मूछे ना ये बड़ी शॉर्टी लग रही है। वो जो नाटक नौटंकी थिएटर वाली मूछे नहीं होती, बस ऐसे चिपका दी है, वो वैसी लग रही है। चलो ये मुच्छी वाला एपिसोड साइड रखें, तो अदरवाइज देवानंद साहब के स्कार्फ्स, उनकी जैकेट्स, उनके स्वेटर्स, इवन इन ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स अगर आप देखें, उनका स्टाइल ऐसे नोटिसेबल होता था। और एक और स्टाइल आइकॉन जो कि जीते जागते स्टाइल एंड फैशन की मूरत थे, फिरोज खान साहब, उनका गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

भाई एक शायर हैं हसन कमाल साहब, उनकी मैं गजल पढ़ रही थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो कहते हैं, सर उठाकर न कभी देखा कहाँ बैठे थे, गिरती दीवार का साया था जहाँ बैठे थे। सब थे मसरूफ अंधेरों की खरीदारी में, हम सजाए हुए शमाओं की दुकान बैठे थे। यही शोहरत का सबब होंगे ये मालूम न था, हम छुपाए हुए जख्मों के निशान बैठे थे। लोग तो बुझते चिरागों के धुएं से खुश थे, हम ही बेकार जलाए हुए जहां बैठे थे। मैं कदा शराब खाना, मैं कदा और भी तन्हाई का सामान निकला, हम की तन्हाई से तंग आके यहाँ बैठे थे। हसन कमाल साहब ने बहुत सुंदर फिल्मी गीत और गजल भी लिखे हैं, तो उनकी लिखी ये खूबसूरत गजल सुन लेते हैं एतबार फिल्म से। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची
1: हेलो
2: सुमन जी, गुड इवनिंग। इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
1: हाँ जी हाँ जी।
2: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
1: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
2: होल्ड कर रहा हूँ।
1: हाँ जी हेलो।
2: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
1: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
2: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
1: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाते हैं, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
2: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
1: है 3rd K 5/14A 1st फ्लोर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
2: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
1: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
2: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
1: मेरा सनशाइन कैंसिल है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
2: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
1: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
2: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
1: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
2: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
1: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
2: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
1: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल
2: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
1: क्या
2: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
3: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
1: नहीं।
2: दोबारा कॉल करेंगे, आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
0: पुरानी चीज चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: आपको पता है 80s में अमृता सिंह को मजाक में मर्द सिंह भी कहा जाता था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये क्या सीन था, कौन उन्हें ऐसे बुलाता था, किसने उन्हें ऐसा नाम दिया, सुनिए पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: ये मर्द सिंह का जो टाइटल मुझे दिया गया ये मैंने नहीं दिया, ये एक बार टिम्पू कपूर ने मुझे दिया था। वो मजाक में मैंने उसे कुछ नामर्द कह दिया था, तो उसका रिटेलिएशन था कि तुम तो मर्द सिंह हो, फिर ऐसा कुछ था, एक मजाक सा हो गया था और वो एक ऐसी इमेज रह गई थी कि जो रह गई।
0: चिंपू कपूर यानी कि राजीव कपूर, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर के सबसे छोटे भाई, इन लोगों ने 80s में आई थिंक एक दो फिल्मों में साथ में काम किया था। चलिए फिलहाल यहाँ गाना सुनते हैं जो अमृता सिंह और राज बब्बर पे पिक्चराइज्ड है, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची 105.4।

0: वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस में से एक थी स्मिता पाटिल जी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। उनको ज्यादातर उनकी 8 फिल्म्स के लिए जाना जाता है जिसमें उन्होंने बहुत ही बोल्ड वुमेन सेंट्रिक रोल्स प्ले किए। इस बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने एक बार क्या शेयर किया था।
1: मेरे भाग्य की बात है कि जब से मैंने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया, मैंने अच्छी फिल्में की हैं। अच्छी फिल्मों से मेरा मतलब ये है कि उसमें जो स्त्रियों के रोल मैंने किए थे, वो औरतें हिंदुस्तान की ऐसी औरतें थी जिनके बारे में जो सच है वो इन फिल्मों में कहा गया था। जो रूरल बैकग्राउंड की हो या अर्बन बैकग्राउंड्स की हो, जैसे भूमिका थी, जैसे मंथन थी, जिसमें हिंदुस्तान की जो सिर्फ सफरिंग औरत ही नहीं, लेकिन उसका जो इनर स्ट्रेंथ है, जो उसकी कष्ट करने की जो ताकत है या परिस्थितियों से झगड़ने का जो उसका एक जुनून है, वो सब बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया था।
0: Well, उन्होंने कमर्शियल फिल्मों में भी काम किया है, याद है नमक हलाल, शक्ति, ऐसी फिल्में। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

फिजिसिस्ट इंदिवर साहब का असली नाम श्यामलाल बाबू राय था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये झांसी के थे और 50s से लेकर 90s तक उन्होंने बहुत अमेजिंग गाने लिखे हैं। इनका पहला जो एक गाना बहुत हिट हुआ था वो था 1951 की फिल्म मल्हार का, याद है आपको वो गाना, बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम। और यहाँ पर इंदिवर साहब का ही लिखा हुआ एक और ब्यूटीफुल गाना हम सुनेंगे पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: All that glitters is not gold, huh? Specifically when it comes to motherhood.
1: Shruti. मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: मिर्ची बिट्यून हूँ आप, और मेरे और आपके जैसा इंसान जो है वो हर दूसरी चीज का इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं बॉलीवुड से लेने की कोशिश करता है, राइट? सो एक चीज जरा दिमाग कान सब खोल के सुनिएगा, इज कियारा आडवाणी का नया इंटरव्यू दैट हैज कम अप विद राज शमानी. क्योंकि उस इंटरव्यू में जो इन डेप्थ बातें हुई है, नॉट जस्ट अबाउट अ रिलेशनशिप बट अबाउट मैरिज, पेरेंटहुड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली postpartum as a mother. जो हमें लगता है ना कि भाई परफेक्ट सेलिब्रिटी मदरहुड इंजॉय कर रहे हैं, दीपिका पादुकोण हो, कटरीना कैफ हो, या फॉर दैट मैटर कियारा आडवाणी हो, बट इन सारी चीजों को एक फुल स्टॉप लगाते हुए कियारा ने कहा कि भाई सबको फिक्र होती है कि हाँ बच्चा कैसा है, वो ढंग से खाना खा रहा है, ढंग से सो रहा है, बट nobody talks about what is going on in the mother's life. जिस हिसाब से आप जब प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उससे कहीं ज्यादा फ्लक्चुएटिंग हार्मोन्स होते हैं आपके पोस्टपार्टम में, एंड दैट्स व्हाई मेनी ऑफ द मदर्स गो थ्रू पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज वेल. अब देखो ये सब्जेक्ट आपके लिए थोड़ा एलियन सा लग रहा होगा अगर आपको पोस्टपार्टम के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, बट दैट्स व्हाट वी रिक्वायर, the change that we want to see around. जिस तरीके से कियारा आडवाणी ने इस चीज को लेकर कॉन्वर्जेशन की शुरुआत की है, we as individuals need to take it forward. हम मदर्स डे के पोस्ट तो बड़े डाल देते हैं कि हमारी माँ ऐसी, हमारी माँ वैसी, लेकिन क्या सच में हम एक माँ को समझने की कोशिश करते हैं, is the bigger question. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, stay tuned, it's hot.

0: हेलो
1: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
0: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
1: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
0: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
1: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
0: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
1: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
0: बोलो।
1: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
0: कौन सा?
1: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
0: कच्चा? अच्छा।
1: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
0: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
1: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
0: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
0: कुकर तो है।
1: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
0: अच्छा।
1: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
0: सोडा,
1: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
0: लहसुन? यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना, खाना बना रहा है?
1: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
0: मतलब उसको पकाऊं?
1: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
0: ऐसे कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क? कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
1: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
0: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
1: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
0: चल जाएगी?
1: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
0: अबे कौन बोल रहा है तू?
1: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
0: अरे यार ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो मिर्ची टॉप ट्रेंडिंग। दिल राजू की अपकमिंग फिल्म, जिसका नाम अभी डिसाइडेड नहीं है बट ये जरूर बताया कि सलमान खान लीड रोल निभाएंगे मूवी में, उसके लिए प्रीति शील सिंह, जिन्होंने धुरंधर फिल्म में मेकअप का दारोमदार उठाया था, उनको रोप इन किया गया है। सो वामशी पिद्दपल्ली डायरेक्टोरियल इस फिल्म में सलमान खान के कैरेक्टर को धुरंधर का टच मिलेगा। दीदी सिर्फ डांस नहीं करेंगी बट इस बार तो गाना भी गाएंगी, बस एक नई कंट्रोवर्सी ना हो जाए इनके इर्द गिर्द। मैं बात कर रही हूँ नोरा फातेही की, जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने के साथ साथ गाना भी गाएंगी, दैट टू इन टोरंटो। वैसे ये जो फीफा वर्ल्ड कप है, इसकी शुरुआत 11th ऑफ जून को होगी एंड इट इज गोना एंड ऑन माई बर्थडे, दैट इज 19th ऑफ जुलाई। विश करना मत भूलना। ओके आखिरी सवाल, नहीं पूछना नहीं चाहती हूँ, ये संजय दत्त की अपकमिंग फिल्म का नाम है जिसका ट्रेलर इज आउट एंड ट्रेंडिंग, एंड भैया ये पहली हिंदी फीचर फिल्म बन चुकी है विच इज मेड एक्सेसिबल इन इंडियन साइन लैंग्वेज, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा विजुअली इम्पेयर्ड ऑडियंस के लिए फीजिबल हो पाए। मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर अभिजीत मोहन वारंग एंड इट इज सेट टू रिलीज ऑन द 15th ऑफ मे, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: जिंदगी ने तो खेले हैं कई सारे घटिया गेम्स, बट उनको साइडलाइन कीजिए, लेट्स फोकस ऑन फिल्मी फेम।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप और हर रोज की बात ही, इट्स टाइम टू फाइंड द मिर्ची फिल्मची, जहां मैं एक बॉलीवुड गेम खेलती हूँ आपके साथ। सिंपल सा सवाल आपसे करती हूँ, उसका अगर आप सही जवाब देते हैं देन कम्स अ चेन ऑफ क्वेश्चंस, और फिर जो जहां अटकता है तीसरा इंसान उसके आगे का गेम खेलता है। सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल MIRCHISHRUTI यानी मिर्ची श्रुति के DMs में स्लाइड इन करके अपना नंबर भेजना होता है, एंड आई गिव यू अ कॉल। तो बहुत सारे नंबर्स आए मेरे पास, उसमें से निमिषा को कॉल किया मैंने। हाय निमिषा, हाउ आर यू?
3: ऑल गुड, आप कैसे हैं?
0: बिल्कुल बढ़िया। सो आर यू रेडी टू प्ले दिस बॉलीवुड गेम विद मी?
3: यस।
0: ऑल राइट, सो आपका पहला सवाल है कि रणबीर कपूर की वाइफ का नाम क्या है?
3: आलिया भट्ट।
0: आलिया भट्ट की फिल्म जिसमें वो किडनैप होती है?
3: हाईवे।
0: ग्रेट। हाईवे के मेल लीड एक्टर का नाम?
3: रणदीप हुडा।
0: रणदीप हुडा की फर्स्ट बायोपिक कौन सी थी?
3: सरबजीत।
0: सरबजीत में उनकी बहन का किरदार किसने निभाया था?
3: ऐश्वर्या राय
0: और सलमान खान की फर्स्ट फिल्म साथ में? कम ऑन, बहुत बड़ा है।
3: हम दिल दे चुके हैं सनम।
0: ग्रेट। हम दिल दे चुके सनम के सेकेंड हीरो का नाम क्या था?
3: अजय देवगन
0: की फिल्म जिसमें वो 4-सीटर बाइक चलाते हैं?
3: गोलमाल।
0: ग्रेट। गोलमाल का कौन सा हीरो मुन्ना भाई MBBS में भी नजर आया?
3: अरशद वारसी।
0: ग्रेट। अरशद वारसी की फिल्म जिसमें वो लॉयर बने थे?
3: जॉली LLB।
0: और जॉली LLB 2 में कौन से हीरो थे?
3: अक्षय कुमार।
0: ग्रेट। अक्षय कुमार की वाइफ इन गुड न्यूज
3: तो नहीं देखी मैंने।
0: कोई बात नहीं, बट इतना अच्छा जो खेला है आपको ये टैग तो मिलना बनता है यार।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो भाई इससे आगे का गेम कौन खेलेगा मेरे साथ वो मैं पर्ची से डिसाइड करूंगी। ऑफ कोर्स मेरे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, इनफैक्ट अगर आपने अभी ज्वाइन इन किया है तो फट से मिर्ची श्रुति के DMs में स्लाइड इन कीजिए ऑन Instagram एंड सेंड मी योर नंबर। क्या पता अगले गेम बाज आप ही बन जाए। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

I love you all. दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: लाइफ के बोरिंग गेम्स को कीजिए साइडलाइन एंड लेट्स फोकस ऑन फिल्मी फेम।
1: श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: जो आपको मिलेगा इफ यू विन द गेम, तभी तो बन पाएंगे मिर्ची फिल्मची, जिसकी तलाश हर रोज होती है थ्रू दिस बॉलीवुड गेम। तो टुडे आई कॉल्ड निमिषा और वो अटक गई थी ऑन द क्वेश्चन कि भाई अक्षय कुमार की को स्टार इन द मूवी गुड न्यूज कौन थी। Now we have got Sneha on the telephone line. Are you ready?
3: हाँ.
0: All right. So the question was कि अक्षय कुमार की वाइफ का रोल इन द मूवी गुड न्यूज किसने प्ले किया है?
3: करीना कपूर ने।
0: ग्रेट। करीना कपूर की फिल्म जिसका डायलॉग है गुड लुक्स गुड लुक्स गुड लुक्स।
3: कभी खुशी कभी गम।
0: बहुत बढ़िया। कभी खुशी कभी गम में अडॉप्टेड बेटा कौन है?
3: शाहरुख खान।
0: शाहरुख खान की फिल्म जिसमें वो थेरेपिस्ट बने हैं?
3: डियर जिंदगी।
0: ग्रेट। डियर जिंदगी की फीमेल लीड का नाम?
3: आलिया भट्ट।
0: आलिया भट्ट की फिल्म जिसमें वो बिहारी बनी है?
3: उड़ता पंजाब।
0: उड़ता पंजाब में पंजाबी रॉकस्टार का रोल किसका है?
3: शाहिद कपूर।
0: शाहिद कपूर की डेब्यू फिल्म का नाम?
3: इश्क विश्क।
0: ग्रेट। इश्क विश्क की कौन सी एक्ट्रेस शाहिद के साथ बाद में भी किसी फिल्म में नजर आई है?
3: अमृता राव।
0: अमृता राव की फिल्म जिसमें वो सुष्मिता सेन के साथ है?
3: तुमसे मिलके दिल का मैं हूं ना।
0: मैं हूं ना में विलन का रोल किसने प्ले किया था?
3: सुनील शेट्टी।
0: सुनील शेट्टी की फिल्म जिसका डायलॉग है अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं ऐसा हो नहीं। धड़कन की फीमेल लीड कौन थी?
3: शिल्पा शेट्टी।
0: ऑल राइट। तो आपको भी मैं ये टैग जरूर देना चाहूंगी यार।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: देखो एक चीज तो हर दिन प्रूफ होती जा रही है कि सिर्फ मैं नहीं, इंडिया का हर दूसरा इंसान कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फिल्मची है। देन बी प्राउड ऑफ दैट। एंड कल एक बार फिर से इस गेम की शुरुआत होगी, तब तक मेरे इंस्टाग्राम आईडी दैट इज मिर्ची श्रुति पे जाके डीएम में स्लाइड इन करके अपना नंबर भेज दीजिए, क्या पता कल आपको कॉल आ ही जाए। फिलहाल तो आगे एक अच्छा सा गाना आ रहा है मिर्ची पे। मैं हूँ श्रुति आपके साथ।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: ¿Aló? ¿Aló?
4: Sir, very good evening, man. Thanks a lot.
3: Bolia.
4: Sir, I'm so sorry, sir, but... सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
3: बनवाया था भैया, क्या हो गया?
4: सर आप तो सर पूरा बता रहे
3: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
4: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
3: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
4: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
3: नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
4: आई एम सो सॉरी सर, मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
3: नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
4: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
3: पागल पागल है,
4: आप तो देने पड़ेंगे सर.
3: हेलो.
4: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
3: कौन बोल रहा है? विपिन?
4: नहीं सर, से बोल तो आप तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
3: पागल है कि दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे,
4: अब तो फंस गए सर.
3: हेलो
4: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
3: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
4: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
3: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं
4: जी? अरे सर, रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची. It's hot.
1: Yeah, pack. हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: only on Radio मिर्ची. It's hot.

0: हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां औरतों को गुस्सा आना मतलब कुछ अटपटा हो जाना।
1: श्रुति,
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: इनफैक्ट बाबू मोशाय, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने भी टाइम एंड अगेन इस चीज को प्रूव किया है। मतलब अगर मेल लीड्स की बात करें, उनको अगर गुस्से वाला कैरेक्टर मिलता है तो इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन अगर औरतों की बात करें तो उनके गुस्से को ना एक अलग तरीके से देखा जाता है कि भाई उनका ये जो गुस्सा है वो मेजर्ड होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए और एक लार्जर कॉज के लिए हो तो समझ में भी आता है। ऐसे छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा कैसे हो सकती है कोई महिला? बट कुछ फिल्में हैं और कुछ कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने इस चीज को सरपास किया है, और आज पांच का पंच के लिस्ट के थ्रू मैं वैसे ही कैरेक्टर्स डिस्कस कर रही हूं, एक्टर्स बेसिकली। सो सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट शिफाली शाह मैम। अब नंबर दो पे हम तबू की बात करना चाहते हैं। सो उनका किरदार माचिस में हो, जो ग्रीफ को, पेन को तब तक एम्ब्रेस करती है जब तक वो एक फोर्स में तब्दील ना हो जाए, या फॉर दैट मैटर उनका कैरेक्टर हैदर या अंधाधुन में हो, जो एक डीपली कॉम्प्लेक्स मॉरली एम्बिग्यूस कैरेक्टर को एक्सप्लोर करती है जिसके साथ ऑडियंस भी एम्पथाइज करने में 10 बार सोचे। चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर 3 पे लेट्स टॉक अबाउट विद्या बालन एज एन एक्टर और उनके कैरेक्टर्स। अब वो फिल्म कहानी की बात हो जहां उन्होंने प्रेगनेंसी के स्टीरियोटाइप्स को वेपनाइज किया है, वल्नरेबिलिटी को डिस्गाइज किया है, या फिर शकुंतला देवी का उनका किरदार हो जो अपने जीनियस और अपने एम्बिशंस को यूं ही साइडलाइन नहीं करती। तो बाबू मोशाय, मेरे इस लिस्ट में और दो ऐसी ही महिलाओं की बातें बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल्ड। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

चल चल चल चल चल चल जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: अगर समाज के हिसाब से रीजन सही ना हो तो औरतों का गुस्सा जायज नहीं होता।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और बाबू मोशा, इस चीज को तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने भी टाइम एंड अगेन प्रूव किया ही है, क्योंकि बहुत सारे मेल एक्टर्स ऐसे गुस्से वाले हमें मिले हैं जिनको लोगों ने वेलकम किया है, उनको अप्रिशिएट किया, उनके टैलेंट को भी सराहा है। लेकिन अगर एंग्री यंग वुमेन ऑफ बॉलीवुड की बात करें तो थोड़ा मामला डगमगा जाता है। इसलिए आज पांच का पंच की लिस्ट में मैं ऐसी ही महिलाओं को सेलिब्रेट कर रही हूँ। सबसे पहले इन द लिस्ट वी टॉक्ड अबाउट शिफाली शाह मैम, नंबर दो पे हमने तब्बू को डिस्कस किया, नंबर तीन पे विद्या बालन, अब नंबर चार पे लेट्स टॉक अबाउट आलिया भट्ट। अब डार्लिंग्स मूवी में उनका किरदार हो जो पहले विक्टिम होती है और फिर इतना ज्यादा गुस्सा उसके अंदर होता है दैट शी टर्न्स द टेबल और अपना बदला लेती है, या फिर उनका जिगरा वाला कैरेक्टर हो जो जस्टिस के लिए अपने फिजिकल लिमिटेशंस को भी साइडलाइन करके आगे बढ़ती है। चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट स्वरा भास्कर एज एन एक्टर। अब नील भट्ट सन्नाटा में इनका किरदार हो जो अपनी किस्मत से रेजिस्ट करते हुए अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी बदलने का सोचती है, या फिर उनका किरदार लिसन माया में हो जो डिसाइसिवली एक्ट करती है, इनफैक्ट अपने बॉस को थप्पड़ भी मारती है टू प्रोटेक्ट हर बाउंड्रीज। वेल, मेरी इस लिस्ट में अगर ऐसी ही कुछ एंग्री यंग वुमेन आप भी डिस्कस करना चाहो, एड इन करना चाहो, देन फील फ्री टू डू दैट। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। मीनवाइल, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो मिर्ची टॉप ट्रेंडिंग। दिल राजू की अपकमिंग फिल्म, जिसका नाम अभी डिसाइडेड नहीं है बट ये जरूर बताया कि सलमान खान लीड रोल निभाएंगे मूवी में, उसके लिए प्रीतिशील सिंह, जिन्होंने धुरंधर फिल्म में मेकअप का दारोमदार उठाया था, उनको रोप इन किया गया है। सो वामशी पिद्दपल्ली डायरेक्टोरियल इस फिल्म में सलमान खान के कैरेक्टर को धुरंधर का टच मिलेगा। दीदी सिर्फ डांस नहीं करेंगी बट इस बार तो गाना भी गाएंगी, बस एक नई कंट्रोवर्सी ना हो जाए इनके इर्द गिर्द। मैं बात कर रही हूँ नोरा फातेही की, जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने के साथ साथ गाना भी गाएंगी, दैट टू इन टोरंटो। वैसे ये जो फीफा वर्ल्ड कप है, इसकी शुरुआत 11th ऑफ जून को होगी एंड इट इज गोना एंड ऑन माय बर्थडे, दैट इज 19th ऑफ जुलाई। विश करना मत भूलना। ओके आखिरी सवाल, नहीं पूछना नहीं चाहती हूँ, ये संजय दत्त की अपकमिंग फिल्म का नाम है, जिसका ट्रेलर इज आउट एंड ट्रेंडिंग, एंड भैया ये पहली हिंदी फीचर फिल्म बन चुकी है विच इज मेड एक्सेसिबल इन इंडियन साइन लैंग्वेज, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा विजुअली इम्पेयर्ड ऑडियंस के लिए फीजिबल हो पाए। मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर अभिजीत मोहन वारंग एंड इट इज सेट टू रिलीज ऑन द 15th ऑफ मे, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: शाम शारदा लेट्स डू

दोस्तों ट्यूसडे का काम होता है बस लाइफ को थोड़ा सेटल कर देना। मंडे ने जो झटका दिया, ट्यूसडे आके बोलता है कि ठीक है भाई अब सांस ले लो। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अगर आज का दिन ड्रामेटिक नहीं था तो ऑनेस्टली दैट इटसेल्फ इज अ विन, क्योंकि ट्यूसडे ना एक्साइटमेंट के लिए नहीं, बैलेंस के लिए होता है। थोड़ा काम, थोड़ा रूटीन, थोड़ा नॉर्मल सी। तो आप भी बताओ दोस्तों, आज का दिन हैवी था या मैनेजेबल? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI और आपकी ट्यूसडे की वाइब शेयर करो। और आपकी ट्यूसडे की वाइब को मैच करने वाला ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35 14A 1st फ्लोर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनशाइन कैंसिल है। एक प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल
3: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: यार
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो यार कितने सारे गाने बनते हैं, कितने सारे एल्बम्स बनते हैं, लेकिन कभी कभार एक ऐसा एल्बम आ जाता है ना जिसका हर एक गाना एक से बढ़कर एक होता है और आज भी उतना ही टाइमलेस है जितना तब जब रिलीज हुआ था तब था। और आज जिस एल्बम की बात हो रही है दैट इज नन अदर देन रॉक स्टार। जी हाँ, क्योंकि इस एल्बम ने एक ऐसा गाना दिया था हमें जो सिर्फ गाना नहीं था, एक रेबेलियन बन गया था। रॉक स्टार का सड्डा हक बना था हर यूथ का एक्सप्रेशन, क्योंकि इम्तियाज अली ने ना तब यार रहमान से कहा था कि मुझे एक ऐसा गाना चाहिए जो जॉर्डन की आग को जला दे, और मोहित चौहान ने इसमें अपनी रॉक वॉइस का मैजिक छोड़ा था, और रणबीर कपूर की जो रॉ एनर्जी थी ना इसने इस गाने को कल्ट बना दिया था। वैसे तो यार ये गाना आज भी जब बजता है तो लगता है कि अंदर से कोई चिल्ला रहा है, मतलब मुझे भी कुछ कहना है, अपने दिल की भड़ास बाहर आ जाती है। तो अगर आपको भी ये गाना पसंद है और आपके भी दिल में इस गाने ने जगह बनाई है तो चलिए आज बजाते हैं सड्डा हक फ्रॉम द वन एंड ओनली एल्बम विच इज स्टिल टाइमलेस, रॉक स्टार बाय ए आर रहमान। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो विच इज दैट अदर एल्बम दैट यू एब्सोल्यूटली लव विच इज स्टिल टाइमलेस। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। तो फुल वॉल्यूम कीजिए क्योंकि सड़ा हक बचने ही वाला है राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट, हिट, हिट, हिट गाना।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज बात हो रही है एक ऐसे टाइमलेस एल्बम के बारे में जिसका यार हर एक गाना दिल को छू जाता है। और वो जो टाइमलेस एल्बम है दैट इज नन अदर देन रॉक स्टार बाय ए आर रहमान। और यार उस एल्बम का एक ऐसा गाना है जो सिर्फ एक लॉस्ट सोल के लिए नहीं लेकिन हर उस इंसान के लिए है जो अपने घर को ढूंढ रहा है। इम्तियाज अली ने गाया हुआ नादान परिंदे घर आ जा इस गाने को ना फिल्म का इमोशनल एंकर बनाया था। ए आर रहमान साहब ने इसमें सूफी और रॉक का एक ऐसा ब्लेंड दिया था कि ये जो गाना है जॉर्डन के सफर का टर्निंग पॉइंट बन गया था। और मोहित चौहान की आवाज उफ, एक दर्द जो सीधा दिल में घुस जाता है। तो यार ये गाना सुनते ही ना एक अजीब सा होम सिकनेस महसूस होता है, चाहे घर पास हो या दूर। तो अगर आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है तो चलिए आपके ही लिए आज प्ले कर रही हूँ नादान परिंदे घर आ जा। और मुझे जरूर बताना कि रॉक स्टार का ये गाना क्या आपका भी फेवरेट है। Tell me on Insta RJ Mirchi Siddhi SIDDHI। लेकिन अगर और भी कोई गाना आपका फेवरेट है फ्रॉम द मूवी रॉकस्टार, जल्दी से मुझे इंस्टा कीजिए। और तब तक के लिए रॉकस्टार का नादान परिंदे घर आजा राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स ऑल।

गरबा का मूड हो या ऑफिस का बोर्डम, दीप गुजराती स्नैक्स की बीट ही काफी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और सूरती स्पेशल तीखा मिक्स भटानी कानी। एवरी बाइट में लगता है दैट यू आर डूइंग डांडिया एंड दैट टू विद फ्लेवर्स, स्पाइसी क्रंची और देसी फन, या जिसकी गूंज ना मिर्ची सिद्धी के स्टूडियो तक भी पहुंच जाती है। तो आज ही ट्राई कीजिए दीप गुजराती स्नैक्स, सूरत से आया फ्लेवर का फेस्टिवल, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज बातें हो रही है एक ऐसे एल्बम के बारे में जिसका यार हर एक गाना दिल को छू जाने वाला है। और आज का जो ये एल्बम है यार, ये अभी भी इतने सालों बाद भी टाइमलेस है। बात हो रही है रॉक स्टार एल्बम के बारे में, कंपोज बाय AR रहमान। और इस एल्बम में तो यार वैसे तो सारे गाने अमेजिंग है, लेकिन एक ऐसा गाना भी है जो सिर्फ सुकून ही नहीं देता, रूह तक को छू जाता है। निजामुद्दीन दरगाह में शूट हुआ कुन फाया कुन, ये जो गाना है ना, असली कव्वाल के साथ रिकॉर्ड किया गया था। AR रहमान ने खुद कहा था कि ये जो कंपोजिशन है वो बहुत ही डिवाइन है। और मोहित चौहान, AR रहमान और जावेद अली की ट्रिनिटी ने इस गाने को ना सोल थेरेपी बना दिया था। वैसे तो यार ये जो गाना है चल पड़ता है जब जिंदगी थोड़ी रुक जाए और हर बार दिल को हल्का कर जाता है। तो अगर आज की शाम दिल थोड़ा घबराया हुआ है या बस थोड़ा वक्त अपने लिए चाहिए ना, तो कुन फया कुन ये जो गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ वो सुन लेना, और मुझे जरूर बताना कि ऐसी कौन सी लाइन है इस गाने की जो आपको टच करती है। टेल मी ऑन इंस्टेंट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और रॉक स्टार का आपका फेवरेट गाना है वो कौन सा है वो भी मुझे जरूर बताना। और तब तक के लिए कुन फाया कुन, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La vieja la burka. Mirchi, burka.
1: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
1: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
1: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
1: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
1: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
1: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: अच्छा अच्छा।
1: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
1: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर तो है।
1: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा।
1: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
1: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
1: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
1: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सिटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सिटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सिटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
1: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
1: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
1: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा है तू?
1: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: यार यार। ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और चलिए आज की शाम में करते हैं थोड़ा रियल टॉक। जी हाँ यार, आजकल मार्केट ना हर वीक चेंज हो ही जा रहा है, कभी रेट्स ऊपर कभी नीचे, कभी सेंटिमेंट ही फ्लिप तो कभी इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा कि यार ड्राइव टाइम भी ना थोड़ा सा दर्द दे रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता है कि मार्केट क्या कर रहा है, बल्कि ये होता है कि यार मेरा बजट क्या क्या अलाउ कर सकता है। स्पेशली अगर होम बाइंग के बारे में बात करूँ ना, तो स्मार्ट होम बाइंग ट्रेंड फॉलो करने से नहीं बल्कि नंबर्स को ढंग से समझने से होती है कि आप कितना कंफर्टेबली कोई भी नया घर अफोर्ड कर सकते हो और किस तरह प्लान कर सकते हो, स्पेशली ऐसे चेंजिंग सिचुएशन में भी। और इसी क्लैरिटी के लिए एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए आए हैं मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। तो चलिए ऐसे डायनामिक मार्केट में बजट को कैसे स्मार्टली प्लान करें, सुनते हैं बीश से। ओवर टू यू बीश।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज हमारी बातें हो रही है एक ऐसे एल्बम के बारे में जिसका यार हर एक गाना दिल में ना एक अलग ही जगह कर देता है और आज भी उतना ही रेलिवेंट है, उतना ही अमेजिंग है। रॉक स्टार एल्बम की बातें हो रही है कंपोज्ड बाय AR रहमान और आज की जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है दैट इज फ्रॉम अमित द्विवेदी जो कि रहते हैं एडिसन में और उनको फिर से उड़ चला जो कि रॉक स्टार का गाना है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि उनका कहना है कि ये गाना सिर्फ एक ट्यून नहीं है, एक फ्लाइट है अपने ख्यालों की, अपने आज़ादी की और अपने सपनों की। और मेरा भी यही मानना है क्योंकि इम्तियाज़ अली के रॉक स्टार एल्बम का ये जो ट्रैक है मोहित चौहान की मैजिकल आवाज़ और AR रहमान की एक्सपेरिमेंटल कंपोजिशन का एक बहुत ही रेयर जेम है। मतलब लिरिक्स इरशाद कामिल जी की है और ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी का ना खुला आसमान ही उन्होंने लिख दिया हो। मूवी में ये जब मोमेंट था जब जॉर्डन के लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट था क्योंकि तब वो अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर म्यूजिक और सफर की दुनिया में उड़ चले थे और इसमें ना कोई फिक्स्ड बीट नहीं है, एक बहुत ही फ्री फ्लो मेलोडी है गाना, बिल्कुल लाइफ की तरह अनप्रेडिक्टेबल। तो मेरे लिए फिर से उड़ चला एक ऐसा ट्रैक है जो बस कहीं पर भी आप सुन सकते हो, चाहे रोड ट्रिप में हो चाहे ट्रेन में हो, हेडफोन्स लगाते ही वर्ल्ड से ना डिस्कनेक्ट कर देता है ये गाना। और अगर आपको भी यही लगता है तो चलिए आपको वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करते हैं विद दिस सॉन्ग रिक्वेस्टेड बाय अमित द्विवेदी जी। और दोस्तों आपको भी अगर कोई ऐसा एल्बम पसंद है जिसके सारे गाने आपके दिल के बहुत ही करीब है तो मुझे जरूर बताइए। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI और तब तक के लिए रॉकस्टार का फिर से उड़ चला राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ऑफिस के डेडलाइन से थोड़ा काम डाउन होना चाहते हो तो बस एक चम्मच दीप दही काफी है। शमशानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और यार ऑफिस के डेडलाइंस, बॉस की बड़बड़ से दिमाग अगर गर्म हो चुका है तो उसे ही कूल करने के लिए दीप दही के साथ एक ठंडी ठंडी लस्सी हो जाए, क्योंकि फार्म फ्रेश, हॉर्मोन फ्री और बिल्कुल घर जैसी टेक्सचर वाली यही है वो दही जो देता है प्योर कम्फर्ट फूड। और अगर लस्सी ना सही, पर अगर रात के डिनर पे एक प्लेट पुलाव और उसके साथ दीप दही के साथ बनाया हुआ वो बूंदी का रायता, ओ हो, बस ऐसा सुकून, ऐसी शांति मिलती है ना कि क्या बताए। तो आज डिनर में हो जाए दीप दही का कूलनेस का क्लासिक फॉर्मूला, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आह

0: प्यार में चम कुछ ऐसे चुगनो शाम शानदार लेट्स डू नॉटंकी
1: हैव अ फंकी टाइम। एक ऐसा एल्बम जिसके हर एक गाने ने दिल में अलग ही जगह कर दी है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज बात हो रही है एक ऐसे एल्बम के बारे में जिसका यार हर एक गाना बहुत ही खूबसूरत है और आपकी जो सॉन्ग रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम दैट एल्बम वो आज मैं प्ले करने वाली हूँ। जी हाँ, बात हो रही है रॉक स्टार एल्बम की कंपोज्ड बाय AR रहमान और ये जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है दैट इज फ्रॉम मोहिनी सांगले हु इज फ्रॉम एडिसन। और मोहिनी कहती है कि यार इस एल्बम का तुम हो जो ये गाना है यार एक ऐसा रोमांटिक गाना है ना जो प्यार भी याद दिलाता है और इसकी खुशबू भी ले आता है। मतलब वो कहते हैं ना कि जब प्यार की यादें इसे दिल में जगह कर देती है, घर कर देती है ना, तब ये गाना याद आता है। और तुम हो को सुनते ही ना रणबीर और नरगिस की वो साइलेंट केमिस्ट्री याद आ जाती है। इरशाद कामिल के लिरिक्स द अल्ट्रा पर्सनल जैसे किसी डायरी से निकले हो और AR रहमान ने इसमें मोहित चौहान और सुजैन डिमेलो की डुएट फील यूज करके यार ये गाना बहुत लॉन्गिंग और लव के लिए बना दिया। तो चलिए ये गाना चलाते हैं आज स्पेशली मोहिनी जी के लिए जिनकी यार पुरानी यादें इस गाने से ताज़ा हो चुकी है। अगर आपकी भी हुई है तो ज़रूर बताना कि आपको ये गाना कैसा लगता है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अगर ऐसा भी कोई एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको बहुत पसंद है उस एल्बम के बारे में ज़रूर बताना, उसके हर एक गाने हम यहीं पर प्ले करेंगे। और कहाँ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Vamos.

0: Milci. Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieva la burga. Milci, burga.
1: Hello? Hello?
2: Sir, very good evening, man. Bank to photo.
1: हाँ बोलिए
2: सर. I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया?
2: सर आप तो सर पूरा बता रहे
1: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: I'm so sorry सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है
2: क्या? आप तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो देने, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है?
2: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: पागल है क्या? दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे,
2: अब तो फंस गए सर.
1: हेलो
2: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
1: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
2: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
2: जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. It's hot.

दोस्तों, कभी कभी लाइफ के छोटे मोमेंट्स ही ना सबसे फिल्मी होते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जैसे कि कार में बैठते ही अचानक से तुमसे ही बच जाए, या फिर ड्राइव के वक्त यूं ही चला चल रहा ही लग जाए, बस वो मोमेंट ही काफी होता है पूरा मूड चेंज करने के लिए। क्योंकि यार बॉलीवुड हमें यही तो सिखाता है, हर दिन में एक छोटा सा सीन ऐसा जरूर होता है, बस उसे नोटिस करना पड़ता है। तो आज का सवाल बहुत ही सिंपल है।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों, कभी कभी हवा और लाइट ऐसी होती है ना कि लगता है कि सब कुछ सिनेमैटिक हो रहा है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और उसी ड्रीमी वाइब के लिए परफेक्ट गाना है सूरज हुआ मध्यम, शाहरुख खान और काजोल का गोल्डन डेजर्ट बैकड्रॉप, स्लो मोशन रोमांस और लिरिक्स जो एक अलग ही दुनिया क्रिएट करते हैं, जैसे मौसम ना रियलिटी से थोड़ा ब्रेक दे रहा हो। तो दोस्तों, आप भी बताओ कि आपका ड्रीमी वेदर सॉन्ग कौन सा है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल ये ड्रीमी सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

संगीत ने बना दी एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अगर बॉलीवुड रोमांस का एक ड्रीमी वॉलपेपर होता तो बैकग्राउंड में ये गाना जरूर होता, सूरज हुआ मध्यम। कभी खुशी कभी गम का ये ट्रैक प्योर लव का स्लो मोशन वर्जन है। जी हाँ, सोनू निगम की स्मूथ वॉइस जैसे सनसेट और अलका जी की आवाज़ जैसे उस सनसेट के ब्यूटिफुल कलर्स, और स्क्रीन पर शाहरुख खान और काजोल, मतलब रोमांस का एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड। तो जी हाँ, अगर आज मूड थोड़ा ड्रीमी है तो ये गाना बिल्कुल परफेक्ट है। और हाँ, आपके हिसाब से बॉलीवुड की सबसे ड्रीमी म्यूजिक जोड़ी कौन सी है, टेल मी ऑन इंस्टा आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार बजाते उनके भी गाने यहां पर। फिलहाल आपके लिए सूरज हुआ मध्यम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35/14A 1st floor। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनशाइन कैंसिल है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी, इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता तो दो।
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल
3: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: यार
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया, रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे आप, क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

संगीत ने बना दी एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिंपल होते हैं पर सीधा दिल को टच कर जाते हैं। रिफ्यूजी का पंछी नदियां पवन के झोंके, ये एक ऐसा गाना है जो सफ़र जैसा लगता है, क्योंकि उसमें सोनू निगम की आवाज़ यानी बिल्कुल फ्री, बिल्कुल रॉ, जैसे खुला आसमान, और अलका जी की आवाज़ यानी सॉफ्ट सूदिंग, जैसे हल्की सी हवा, और स्क्रीन पर अभिषेक बच्चन और करीना कपूर की इनोसेंस और ये मेलोडी यानी प्योर मैजिक। तो चलिए थोड़ा सा सिंपल प्यार फील करते हैं सोनू निगम और अलका जी की इस अनोखी जोड़ी के साथ फॉर दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग। लेकिन दोस्तों आप ही बताना कि कौन सा गाना है जो आपको इंस्टेंटली काम कर देता है, स्पेशली इस पावरफुल म्यूजिकल डुओ का, सोनू निगम जी का और अलका याग्निक जी का। तो चलिए फिलहाल पंछी नदियां सुनते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना। हिट, हिट, हिट, हिट गाना।

0: संगीत ने बना दिए एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और वैसे तो बॉलीवुड में इतनी सारी जोड़ियां बनती है, लेकिन बॉलीवुड म्यूजिक में हमारी भी बहुत सारी ऐसी फेवरेट जोड़ियां हैं जो यार इतने धमाकेदार गाने हमें दे चुके हैं। और उन्हीं में से एक है सोनू निगम और अलका याग्निक जी की जोड़ी। और यार उनके कुछ गाने सिर्फ रोमांटिक ही नहीं, इंटेंस और फिल्मी और फुल पैशन वाले भी है, जैसे कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का, बनके तेरा जोगी। ये गाना प्योर जुनून वाला, प्यार वाला गाना है ये। जी हाँ, सोनू निगम की पावरफुल आवाज़, जैसे कि फुल ऑन कमिटमेंट, और अलका याग्निक जी की आवाज़ उस कमिटमेंट को सॉफ्टनेस देती हुई। और जब स्क्रीन पे शाहरुख खान और जूही चावला का प्लेफुल रोमांस दिखता है तो यार ये गाना ना और भी ज़्यादा अलाइव हो जाता है। तो अगर आपको भी वो ओल्ड स्कूल बॉलीवुड वाला इंटेंस प्यार पसंद है तो मुझे ज़रूर बताइए कि कौन सा गाना आपका फुल्ली फिल्मी लव डिफाइन करता है। टेल मी ऑन इंस्टाटार जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल बजाते हैं बॉलीवुड म्यूजिक के पावरफुल कपल का, यानी सोनू निगम जी का और अलका याग्निक जी का, बन के तेरा जोगी राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट
1: मिर्ची, फ्रेश माल।
2: ड्रीमी वाइब और रोमांटिक फील के साथ सुनो शांत मेरा दिल।

इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और देखते ही देखते ये शाम भी ढलने आ चुकी है और हमारे भी जाने का वक्त आ चुका है। लेकिन दोस्तों, आपके साथ शाम शानदार में अलग अलग धमाकेदार गाने बजाने का जो मज़ा है, उसे मैं मिस नहीं करने वाली। इसलिए कल फिर से आपसे मिलने आऊँगी फ्रॉम 4 to 8 PM EST। और आज के लिए आप कहीं ना जाइए, क्योंकि यार प्यार के जो अनोखे फंडे हैं वो आपको समझाने आ रही है रोशी। तो कहीं ना जाइए, जमे रहिए, बने रहिए राइट हियर ऑन मिर्ची। और आपकी जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है वो मुझे सेंड करते रहिए ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल @RJMirchiSiddhi SIDDHI ओनली ऑन इंस्टा। और आपके लिए ये अगला तड़कता फड़कता गाना जाते जाते राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: जिन आदमियों के पास कुत्ते होते हैं एज पेट्स, दे आर मोर अट्रैक्टिव टू वुमेन. ये एक रिसर्च का पीस है जो मैंने रिसेंटली पढ़ा, लेकिन आई एम नॉट द ओनली वन जिसने इसे रिसेंटली पढ़ा है. आई एम गेसिंग एवरी सिंगल मैन इन इंडिया नोज दिस, और वो अपने भाई के, अपने नेबर के, अपने बेस्ट फ्रेंड के कुत्ते बोरो करके उनके साथ फोटो खिंचवा कर डेटिंग एप्स पर डाल देते हैं. मैंने जितने डेटिंग एप्स पर बंदे देखे हैं विद डॉग्स, इट्स नॉट इवन फनी. आई थिंक ऑल ऑफ द डॉग्स इन इंडिया आर ऑन डेटिंग एप्स वेदर दे लाइक इट और नॉट, सिंपली बिकॉज हर बंदे को लगता है कि अगर फोटो में उसके साथ एक कुत्ता है तो वो अट्रैक्टिव लग रहा है. पहले दो तीन स्वाइप्स में ये सही है, गाइज लुक रियली कूल, लेकिन उसके बाद यू आर लाइक कि यार हर फोटो में ये कुत्ता क्या कर रहा है, और अगर ये कुत्ता इतना इम्पोर्टेंट है तो मेरी तो इस बंदे की जिंदगी में ज़्यादा जगह होने नहीं वाली है. सो माई सजेशन टू यू गाइज इज, पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू बता रही हूँ कि जब आप डेटिंग ऐप पर अपनी फोटोज़ विद योर नेबर का कुत्ता या अपने चाचे के भाई के बेटे का कुत्ता जब वो डाल रहे होते हैं ना, तो जस्ट कीप इट डाउन टू वन और टू फोटोज. ठीक है, हर फोटो में कुत्ते की ज़रूरत नहीं है. पता नहीं क्यों मुझे अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स की याद आने लगी. आई वंडर व्हाई, व्हाट इज द कीवर्ड दैट आई एम यूजिंग हियर. व्हाइल यू फिगर

0: Fermici. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. La viva la murga.
1: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
1: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
1: एक महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये एक महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
1: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
1: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
1: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: अच्छा अच्छा।
1: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ,
1: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर तो है।
1: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा।
1: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
1: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
1: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
1: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सिटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सिटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सिटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
1: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
1: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
1: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा है तू?
1: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: यार यार। जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।